सशक्तिशानुजं सचेपते प्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति नमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचि सङ्कुले विवेक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेकम्।

नाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्यमन्वहम अनूपरूप भूपतिम नतो अमुर्विजापतिम प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम इदं नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नाथ।

वर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसंपदां तर्जनय्यमदूतानां राम रामेति गर्जनं श्री सीताराम नाम महाराज की। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत राम नाम की गर्जना भाग जाए हम दूत श्री सीता।

0: जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम।
1: Gracias.

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा एफएम पहलगाम 100.0 पर। श्रोताओं, ये विशेष प्रसारण देश और विदेश से हमारे सभी श्रोता सुन पाते हैं डीटीएच की विभिन्न सर्विसेज, न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल तथा वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। आज के इस विशेष प्रसारण में मैं हूं आपकी साथी उद्घोषिका इरम कुरैशी। प्रतिदिन ये विशेष प्रसारण आप तक पहुंचता है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। आइए भोलेनाथ को याद करते हैं।

श्यामाना जी, यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, हर साल जब बाबा बर्फानी के दर्शन का समय आता है तो पूरे देश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु कश्मीर की पवित्र धरती पर पहुंचते हैं। इस वर्ष ये यात्रा 3 जुलाई से आरंभ हुई थी और अब अपने सबसे पवित्र और अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। श्रोताओं, महंत दीपेंद्र गिरी जी की अगुवाई में दशमी अखाड़ा श्रीनगर से 22 अगस्त को छड़ी मुबारक अपनी मुख्य यात्रा पर निकल चुकी है। कश्मीरी पंडितों और साधु संतों के साथ ये पवित्र छड़ी अलग अलग मंदिरों और पवित्र स्थानों से होती हुई पवित्र गुफा की तरफ बढ़ रही है। बाईस और 23 अगस्त को छड़ी मुबारक श्रीनगर से निकलकर पहलगाम पहुंची, जहां लिदर नदी के किनारे पारंपरिक पूजा और अभिषेक किया गया। 24 अगस्त को पहलगाम से आगे बढ़कर पवित्र छड़ी मुबारक ने चंदनवारी में रात्रि विश्राम किया। 25 अगस्त को चंदनवारी से कठिन चढ़ाई करके छड़ी मुबारक शेषनाग झील पहुंची और आज 26 अगस्त है। आज छड़ी मुबारक शेषनाग से आगे बढ़कर पंचतरणी पहुंच चुकी है। अगले 2 दिनों तक पंचतरणी में ही खास विश्राम और विशेष पूजा अर्चना रहेगी और 28 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा पे परसों छड़ी मुबारक पवित्र गुफा पहुंचेगी, जहां बाबा बर्फानी के साथ पवित्र दर्शन होंगे, वेद मंत्रों के साथ साथ अंतिम पूजा होगी, महाआरती होगी और उसके बाद ही इस श्यामाना जी यात्रा 2026 का समापन होगा। श्रोताओ, छड़ी मुबारक एक महत्वपूर्ण हिस्सा है श्यामाना जी यात्रा का और छड़ी मुबारक के बगैर ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। श्यामाना जी यात्रा का स्टार्टिंग में भी छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना होती है और जब ये अपने अंतिम चरण पर पहुंचती है तब भी छड़ी मुबारक की पूजा और अर्चना की जाती है। कुछ ही देर में हम हमारे संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि हमारा उनके साथ राबता कायम हो सके, ताकि छड़ी मुबारक की आगे की क्या कुछ कार्यक्रम है और कल क्या कुछ हुआ वहाँ पहलगाम में, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण।

विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानु यथा सद्मिद्वृधे

0: श्रोताओं, अब हमारे साथ फोन लाइंस पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तारिक। आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। जी तारिक, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास छड़ी मुबारक के जो पूजा वगैरह हो रही है पहलगाम में उसके बारे में?
1: सबसे पहले हम आपका बहुत शुक्रिया और इस विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को मेरा शुक्रवाद। तो अगले 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के अब महज 2 दिन शेष रह गए हैं। 3 जुलाई से शुरू होने वाली ये पवन यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव के हक तरफ बढ़ रही है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा मौसम के बारे में आपसे बात करूं तो पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक यात्रा रूट पर आज मौसम मजमूई तौर पर साफ और धूप वाला रहेगा, जबकि दोपहर के बाद बाज मुकाम पर जज्वी तौर पर बादल छा सकते हैं। बारिश के इम्कान नहायत कम है, जिसके बायस ट्रैकिंग के लिए हालात साजगार रहने की तवक्को है। अमरनाथ गुफा के मुकाम पर दर्ज हरारत 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। दोपहर के अवकात में बारिश के इम्कान तकरीबन 0 से 15% तक रहेगी, जबकि हवाएं हल्की रफ्तार से शुमाली मगरब या जनूबी मगरब के सिमत से चलने की तवक्को है। पहलगाम महवर में दिन के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात के वक्त दर्ज हरारत तकरीबन 11 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। मजमूई तौर पर पहलगाम ता अमरनाथ गुफा रास्ते पर मौसम ज्यादातर साफ और मुस्तकब रहने की पेशगोई की गई है, जिससे यात्रियों और ट्रैकिंग करने वालों के लिए मौसमी हालात निस्बतन साजगार रहे। तो बात छड़ी मुबारक की है तो छड़ी मुबारक आज पवित्र यात्रा के तीसरे पड़ाव शेषनाग में विराजमान है। तो जत्थे के साथ साधु संतों के अलावा सिक्योरिटी अधिकार, हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल

0: स्टाफ, डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी शामिल हैं, जबकि आज 24 और कल 27 अगस्त को पंचतरणी में रात का पड़ाव है। तो आखिरकार 28 अगस्त जो परसों को श्रवण पूर्णिमा के पवन दिन श्री मुबारक श्री अमरनाथ के पवन गुफा पहुंचेगी सुबह सादिक, जबकि जहां बाबा बर्फानी के दर्शन पूजा अर्चना और विशेष धार्मिक मंत्र उच्चारण के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का रिवायती संपन्न समापन होगा। श्रोताओं के लिए मैं ये भी बात बता दूं, चढ़ी मुबारक की ये पवन जो परंपरा सिर्फ हिंदू समाज के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ कश्मीर के मुकामी मुस्लिम समुदाय के लोग भी अपनी एक विशेष संस्कृति और तारीखी अहमियत रखते हैं। मुकामी लोग सदियों से चढ़ी मुबारक की रवानगी को सर की मौसम के आमद के एक और अलामत के तौर पे देखते हैं, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है
1: जी।
0: क्योंकि शाम के वक्त ऐसा लगता है कि सर्दियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। चढ़ी मुबारक को श्री अमरनाथ जी यात्रा का एक गहरा धार्मिक और तारीखी संबंध है। यही वजह है कि श्री अमरनाथ यात्रा के परंपरा का आगाज और समापन चढ़ी मुबारक के साथ ही होता है, यानी जेठ अष्टमी पूर्णिमा से श्रवण पूर्णिमा तक का जो उत्साह लगभग एक महीने का रहता है, मजहबी एतबार से इंतहा अहम समझा जाता है और यही खुसूसी धार्मिक तौर पे यात्रा का बेसिक दिन होते हैं। जी
1: तारिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता तारिक, हमारे साथ जुड़ रहे थे और छड़ी मुबारक के बारे में बता रहे थे कि क्या कुछ धार्मिक सिग्निफिकेंस है छड़ी मुबारक की। और जैसा कि इन्होंने बताया, आज 26 अगस्त और 27 अगस्त की रात्रि विश्राम जो है छड़ी मुबारक का पंचतरणी में होगा और उसके बाद परसों छड़ी मुबारक सुबह तड़के पवित्र गुफा पहुंचेगी, जहां महापूजा आयोजन और आरती के बाद ही इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा का सफलपूर्वक समापन होगा।

श्रोताओं, छड़ी मुबारक अमरनाथ यात्रा का बहुत ही पावन प्रतीक है। छड़ी मुबारक केवल एक लकड़ी की छड़ी नहीं है, बल्कि भगवान शिव के त्रिशूल का स्वरूप है और साक्षात प्रतीक है। इसकी अगुवाई दशमी अखाड़ा के महंत दीपेंद्र गिरी जी करते हैं। जब तक छड़ी मुबारक पवित्र गुफा नहीं पहुंचती, वहां महापूजन का आयोजन नहीं होता, तब तक अमरनाथ यात्रा का मुख्य धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता। आज 26 अगस्त और कल 27 अगस्त की रात्रि विश्राम छड़ी मुबारक पंचतरणी में ही होगा। छड़ी मुबारक शिशनाग से आगे बढ़ते हुए महागुनस पास को पार करके पंचतरणी पहुंच चुकी है। अगले दो दिनों तक पंचतरणी में ही रात्रि विश्राम होगा और विशेष पूजा अर्चना चलेगी। और परसों 28 अगस्त यानी श्रवण पूर्णिमा के पावन दिन छड़ी मुबारक पंचतरणी से सुबह रवाना होकर सुबह तड़के पवित्र गुफा पहुंचेगी और वहां बाबा बर्फानी के पवित्र शिवलिंग के सामने वेद मंत्रों के जाप के साथ मुख्य पूजा का आयोजन होगा और उसके बाद ही इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा अपने सफल पूर्वक संपन्न होगी। श्रोताओं, छड़ी मुबारक के सफर को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इस साल बेमिसाल इंतजाम किए हैं। छड़ी मुबारक के पूरे मार्ग पर केंद्रीय बल, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना द्वारा एक विशेष सुरक्षा घेरा तैयार किया है। छड़ी मुबारक के आगे पीछे पैदल सुरक्षा दस्ता चल रहा है। कई सारी और सुविधाएं भी छड़ी मुबारक की पदयात्रा के साथ साथ प्रशासन ने रखी हैं। एक विशेष मेडिकल टीम, एडवांस्ड एम्बुलेंस हमेशा चलती रही जब तक वाहन जा सके पहाड़ी क्षेत्र में, वहां तक एक एडवांस एम्बुलेंस भी छड़ी मुबारक की यात्रा के साथ चलती रही और हाई आल्टीट्यूड पर साधु संतों और भक्तों के लिए पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी रखे गए ताकि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो वहाँ पर पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स, क्योंकि आप जानते हैं ऊंचाई पर जब जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा हवा में ज़रा कम होती है और ऑक्सीजन की कमी कई सारे लोगों को होती है, उस वजह से पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स वहाँ रखे गए हैं हर एक स्थान पर। और इमरजेंसी मेडिसिन के साथ साथ एडवांस्ड मेडिकल

टीम डॉक्टरों का दस्ता भी उनके साथ बिल्कुल चल रहा है। चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी में छड़ी मुबारक के साथ चल रहे साधु संतों और भक्तों के लिए विशेष वाटरप्रूफ टेंट्स और गर्म टेंट्स का प्रबंध किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि मौसम कभी भी पहाड़ी क्षेत्र में बदल सकता है और ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे मौसम कब बदल जाए इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इस वजह से गर्म टेंटों का भी वहाँ इंतज़ाम रखा गया है और छड़ी मुबारक के पूरे रास्ते पर, यानी कि दशमी अखाड़ा श्रीनगर से जब 22 अगस्त को छड़ी मुबारक अपने अंतिम पड़ाव पर चली, वहाँ से लेकर बिल्कुल अलग अलग स्थानों पर, चाहे वो चंदनवाड़ी हो, शेषनाग हो, पंचतरणी हो या पहलगाम का मुख्य गौरीशंकर मंदिर हो, हर जगह पर सीसीटीवी ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही है और जिला प्रशासन ने एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया है ताकि हर एक लोकेशन को मॉनिटर किया जा सके। एचएमटी में ये कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जहां से ये हर एक चीज़ को मॉनिटर करते हैं। हमारे प्रशासन की एक टीम होती है, लगभग 50 से 60 लोगों की ये टीम जो कि हर एक जगह पर नज़र रखे हुए हैं, हर एक चीज़ पर नज़र रखे हैं, सर्वेलेंस करते हैं, लाइव सर्वेलेंस, जिससे हर एक चीज़ पर नज़र होती है उनकी और हर एक चीज़ को मॉनिटर किया जाता है 24 घंटे इस कंट्रोल रूम से और ड्रोन मॉनिटरिंग से। लंगर कमिटीज़ की अगर हम बात करें तो स्थानीय लोगों का भी इसमें बहुत ही ज़्यादा रोल होता है और लंगर कमिटीज़ के सहयोग से छड़ी मुबारक के डिफरेंट हॉल्टेड पोजिशंस पे साधु संतों के लिए शुद्ध सात्विक भोजन, गर्म पानी और चाय नाश्ते की 24 घंटे व्यवस्था की गई है। श्रोताओं, प्रशासन का सहयोग और भक्तों की आस्था ही है जो इस कठिन यात्रा को इतना धार्मिक और भव्य बनाती है। श्री अमरनाथ जी यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई को आरंभ हुई थी और परसों यानी 28 अगस्त को अपने समापन पर पहुंचेगी। इस वर्ष 4,80,000 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में जाके माथा टेका है, वहाँ की पवित्र शिवलिंगम के दर्शन प्राप्त किए हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी कराई हैं।

श्रोताओ, जैसा कि हम बता रहे थे, इस वर्ष ये यात्रा 3 जुलाई को आरंभ हुई और लगभग 4,80,000 से ज़्यादा तीर्थ यात्रियों ने इस वर्ष बाबा बर्फानी के दर्शन किए और पुण्य प्राप्त किए। श्रोताओ, बर्फीले पहाड़ों, कठिन रास्तों और अनिश्चित मौसम के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आती है। देश के हर कोने से, यहाँ तक कि कन्याकुमारी से भी तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं। यहाँ तक कि विदेश से भी भक्त बाबा के द्वार पहुँचते हैं और अपने मनोकामनाएं लेकर आते हैं। श्रोताओं, 4,80,000 एक विशाल आंकड़ा है और इस विशाल आंकड़े ने यह साबित कर दिया है कि जब आस्था सच्ची हो तो कोई भी कठिनाई हो, कोई भी कठिन रास्ता हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, बर्फीले पहाड़ हो, ऊंचे पर्वत हो, खड़ी चढ़ाई हो, भक्तों के कदम बिल्कुल नहीं रुकते और वो हमेशा कहते हैं बम बम बोले।

श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन पा रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा देश विदेश से हमारे श्रोता हमें सुनते हैं DTH की सर्विसेज, YouTube की आकाशवाणी आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप तथा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, आज 26 अगस्त है और जैसा कि आप जानते हैं, पवित्र

0: छड़ी मुबारक आज शेषनाग से आगे बढ़ते हुए पंचतरणी पहुंच चुकी है। अगले दो दिन पंचतरणी में विशेष पूजा के बाद 28 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा के दिन छड़ी मुबारक पवित्र गुफा पहुंचेगी, जहां महाआरती और महापूजन का आयोजन होगा और उसके बाद ही इस विशेष पूजा के साथ ही इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा जो 3 जुलाई को आरंभ हुई थी उसका औपचारिक समापन होगा। श्रोताओ, इस वर्ष 4,80,000 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, जो एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों का आना और यात्रा का इतना सफलता से चलना कोई आसान बात नहीं है। इस ऐतिहासिक आंकड़े के पीछे है दिन रात मेहनत करने वाले हमारे असली हीरोज, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और हमारे सुरक्षाकर्मी। हर यात्री के लिए हर किसी सुविधा को प्रदान किया गया हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा, खाने पीने रहने रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया और हमारे सुरक्षाकर्मी 24 घंटे बर्फीले पहाड़ों पर तैनात रहकर हर एक यात्री की सुरक्षा में रहे, उनकी सुरक्षा को उन्होंने सुनिश्चित किया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स ने किसी भी मौसम की चुनौती या लैंडस्लाइड्स के वक्त रास्तों को साफ किया और ये सुनिश्चित किया कि यात्रा मार्ग हमेशा यात्रियों के लिए खुला रहे, ताकि अगर किसी भी वजह से मौसम में बदलाव की वजह से अगर यात्रा ट्रैक्स पर थोड़ी मरम्मत का काम होना था तो बीआरओ ने वो सुनिश्चित किया कि यात्रा ट्रैक्स पर मरम्मत हो और यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दोबारा से मिल जाए। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुनते रहिए। अभी फिलहाल हम आपको लिए चल रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहाँ से आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार हम दोबारा से लौटेंगे इस विशेष प्रसारण में, जहाँ से आप श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जुड़ी सभी सूचनाएं सुनेंगे। सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिर ओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू

0: करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
2: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल के को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से

0: 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फैबियानो कारुआना के बीच खेला

0: जाएगा। शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद ए मिलाद उन नबी की रौनक, केरलमवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिव्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 30,000 करोड़ रुपीज एट प्रगति मीटिंग। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेट्स 1 ईयर डेडलाइन फॉर 100% इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agreed to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Miladun Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today. Keralites across the globe celebrating Thiruvonam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Keimer. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. The Prime Minister has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. More from our correspondent.
3: The Prime Minister called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. The Prime Minister further emphasized that delays in infrastructure projects have

0: बहाल होने और उसके फवायद की फराहमी में ताखीर का सबब बन सकते हैं। जनाब मोदी ने वजारतों और रियासती हुकूमतों के दरमियान फ़ाल और पेशगी इकदाम पर मबनी काम के कल्चर को फ़रोग देने पर भी जोर दिया, ताकि प्रोजेक्ट के नफाज के हर मरहले पर ज्यादा जिम्मेदारी और मिल्कियत का एहसास हो। डिजिटल ज़रई मिशन के तहत एग्री स्टैक का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने ज़रई आदाद शुमार से ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए मसनू जहानत AI समेत जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने की जरूरत पर जोर दिया। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को हर शोबे में आलमी सतह पर कायद के तौर पर उभरने के लिए अपनी दाखिली सलामती को मजीद मजबूत करना होगा। नई दिल्ली में सिक्योरिटी की हिकमत अमली से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस NSSC के अख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का हदफ मुकर्रर किया है और एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए मजबूत दाखिली सलामती बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर साबिका हुकूमतों ने मुनशियात, नक्सलिज्म और शिमाल मशरकी रियासतों के मसाइल को बड़े बहरानों में तब्दील होने से पहले ही भांप लिया होता तो मुल्क को कई दहाइयों तक इनके संगीन नतायज नहीं भुगतने पड़ते। वजीर दाखला ने कहा कि हुकूमत ने दाखिली सलामती के चैलेंज वाले इन तीनों महाज पर मौजूद संगीन मसाइल पर काबू पा लिया है और इस कामयाबी का पूरा सहरा रियासती पुलिस फोर्सेज, मरकजी एजेंसियों और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज को जाता है। उन्होंने कहा कि NSSC फोरम को चाहिए कि वो आइंदा 15 से 20 साल के रुझानात का तजिया करे, मुमकिन तौर पर सामने आने वाले मसाइल की निशानदेही करे और पहले ही निमटने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली तैयार करे। जनाब शाह ने मजीद कहा कि तीन नए फौजदारी कवानीन अगले एक साल के अंदर 100% नाफिज कर दिए जाएंगे। इन कवानीन का मकसद फौजदारी मुकदमात को 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की सतह तक निपटाने और सजा की शरह में 25% इजाफा करना है। दिल्ली हुकूमत आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 अहल खातून मुस्तफीदीन को मंजूरी नामे सपुर्द करेगी। इस स्कीम के तहत अहल खवातीन को हर माह 2,500 रुपये माली मदद फराहम की जाएगी। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: दिल्ली हुकूमत ने बताया कि अब तक 9,13,000 से ज्यादा खवातीन इस स्कीम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं, जबकि 6,52,000 से ज्यादा दरखास्तें जमा की जा चुकी हैं। हुकूमत के मुताबिक माली इमदाद अगले महीने की 1 तारीख से खातून मुस्तफीदीन के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। दिल्ली के 2026-27 के बजट में इस स्कीम के लिए 5,110 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। इस स्कीम का मकसद खवातीन को माली तहफ़ फराहम करना और उन्हें खुद कफील बनाना है। दिल्ली हुकूमत ने तमाम अहल खवातीन से अपील की है कि वो मुकर्रा वक्त पर अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लें। दिल्ली से सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: वजारत दाखिला ने जुनूबी रियासत केरला के नए नाम केरलम को बाजाबता तौर पर नोटिफाई किया है, जिसका इतलाक कल यानी 25 अगस्त से हुआ। 11 अगस्त को लोकसभा में और उससे अगले दिन राज्यसभा में केरला का नाम तब्दील करने से मुताल्लिक बिल मंजूर किया गया था। इस महीने के शुरू में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने केरला का नाम तब्दील करके केरलम करने से मुताल्लिक बिल को मंजूरी दी थी। दुनिया भर में केरला के लोग आज थिरुओनम मना रहे हैं। तफसील हमारे नामनिगार से।
0: थिरुओनम का आगाज ओनापुकुलम से हुआ। ये त्यौहार केरलम के लोग मजहब और जात से कतई नजर मनाते हैं। सबरीमाला, अरुणमाला और गुरुवायूर समेत मंदिरों में खसूसी पूजा की जा रही है। दोपहर बाद केरलम में हजारों सकाफती प्रोग्राम और रिवायती खेलों का अहतमाम किया जाएगा। रियासत में बारिश के बावजूद लोग मंदिरों में बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने भारत चीन सरहदी इलाकों में अमन अमान बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया है, ताकि दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में मुसलसल इजाफा और पेशरफ्त जारी रह सके। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल बीजिंग में चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ भारत चीन सरहदी मसले पर खसूसी नुमाइंदों के मुजाकरात के 25वें दौर की मुश्तरका सदारत की। वजारत खारजा के एक बयान के मुताबिक दोनों खसूसी नुमाइंदों ने भारत चीन सरहदी मसले पर खुलकर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों ने अपने मजमूई और तवील मुद्दती मफादात को मद्देनजर रखते हुए सरहदी मसले के सियासी हल की तलाश के लिए मुजाकरात और कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया।

0: कनाडा और अमेरिका के दरमियान जारी तजारती कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। कनाडा ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 20 अरब डॉलर मालियत की अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद किए हैं। इन मसनूआत में स्टील, डेयरी, बर्फी आलात और ज़रात से मुतालिक साजो सामान शामिल है। नए टैरिफ सनअती सामान के अलावा रोज़मर्रा की अशिया जैसे सी फूड, पनीर, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट पेपर पर भी लागू होंगे, जिनमें से कुछ चीज़ों पर 50% तक ड्यूटी लगाई गई है। कनाडा के ये नए टैरिफ 8 सितंबर से नाफिजुल अमल होंगे, जबकि अमरीकी टैरिफ हफ्ते के रोज से ही लागू हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुरमुज में मौजूद तमाम बारूदी सुरंगों को हटा दिया है या धमाके से तबाह कर दिया है। आबनाए हुरमुज एक इंतहाई अहम बहरी गुजरगाह है, जिसे मगरबी एशिया में जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने बड़ी हद तक बंद कर रखा है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान को खबरदार कर दिया गया है कि अगर कोई भी जहाज या कश्ती नई बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करेगी तो उसे फौरी तौर पर और मुनज्जम अंदाज में तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप के इस बयान पर ईरान की जानिब से अभी कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। आबनाए हुरमुज को बंद करने के बायस आलमी बाजारों में तेल की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव देखा गया है। ट्रंप अक्सर कहते रहे हैं कि इस इलाके पर अमेरिका का कंट्रोल है, ताहम ईरान ने उन बहरी जहाजों पर फायरिंग भी की है जिनके बारे में उसका कहना है कि जहाजों ने उसकी इजाजत के बगैर आबनाए हुरमुज से गुजरने की कोशिश की थी। आज पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत ईद मिलादुन्नबी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मीलाद महफिलों और सीरत पाक के जलसों का एहतमाम किया गया है, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और तालीमात को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर मीलाद के जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि यह दिन दुनिया भर में इत्तेहाद और खुशी को फरोग देगा। वजीर आजम ने तमन्ना की कि रहमदिली, मेहरबानी और मुआशरे की भलाई का जज्बा हमेशा हम वतनों की रहनुमाई करता रहे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओनम के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि यह रंगारंग फेस्टिवल दुनिया भर में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि यह फेस्टिवल खुशी, इत्तेहाद और खुशहाली के जज्बे को मजीद फरोग दे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज पर्नम में पितरा देवी मार्टियस मेमोरियल का इफ्तिताह करेंगे। ये यादगार गोवा की आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए एक खराज तहसीन है और इसका मकसद आज़ादी की तहरीक के दौरान दी जाने वाली कुर्बानियों की याद को महफूज बनाना है। पेश एक रिपोर्ट। वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि ये यादगार उन 31 सत्याग्रह करने वाले लोगों को खराज अकीदत है जिन्हें 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने के मुतालबे के साथ दाखिल होने की कोशिश के दौरान पुर्तगाली फौजियों ने शहीद कर दिया था। इस यादगार को इस अंदाज में डिजाइन किया गया है कि हाजरीन गोवा की सत्याग्रह तहरीक की तारीख को आसान और दिलचस्प अंदाज में समझ सके। तवक्को है कि यह यादगारी मकाम मालूमात और मकामी फख्र का एक ऐसा मरकज बनेगा जो नई नस्ल को गोवा की तारीख से जोड़ने में मदद करेगा। पनाजी से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कौमी राजधानी में फिलहाल प्याज या चीनी की कोई किल्लत नहीं है। दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली में प्याज और चीनी की दस्तियाबी और कीमतों का जायजा लिया। हुकूमत ने कहा है कि अगर कीमतों में मजीद इजाफा होता है तो मरकजी हुकूमत के इदारे नैफेड से प्याज और चीनी खरीद कर दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर आवाम के लिए दस्तियाब कराएगी। हुकूमत ने यह भी यकीन दिलाया कि ये अशिया उसी कीमत पर फरोख्त की जाएंगी जिस कीमत पर उन्हें नैफेड से खरीदा जाएगा, जबकि नकल व हमल और दिगर मुतल्लिका अखराजात दिल्ली सरकार बर्दाश्त करेगी। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा ने जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से शिकस्त देकर ग्रैंड चेस टूर के आखिरी मरहले के फाइनल में जगह बना ली है। दूसरा क्लासिकल मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी को आखिरी दिन 6 पॉइंट्स की बर्तरी हासिल थी, जिस दिन कम दौरानिए के मैच खेले गए। टूर्नामेंट के फाइनल में प्रगनंदा का मुकाबला अमेरिका के फैबियानो कारवाना से होगा, जो इस इवेंट के दिफाई चैंपियन हैं। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया अमर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले

0: आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के दौरे चीन से मुतालिक खबरों को अपनी शेष सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, चीन के नायब सदर हान से मिले डोभाल, दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर की बातचीत। दिफाई खुद इनसारी की जानब भारत का बड़ा कदम, रिवायती मिजाइल निज़ाम की टेक्नोलॉजी भारतीय सनतों को मुंतकिल करने की मंजूरी। इस खबर को इनकलाब प्रताप समेत कई दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने एक अहम खबर को शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, वजीर दाखिला अमित शाह ने दरअंदाजों के खिलाफ कार्रवाई, मफरूर मुजरिमों को मुल्क वापस लाने और कानून के शिकंजे में लाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों को सख्त हिदायत जारी की। आज ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पूरे मुल्क में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस खबर को सभी अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 3 नए फौजदारी कवानीन के 100% नफाज के लिए 1 साल की मुद्दत मुकर्रर की। दिल्ली हुकूमत आज लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 अहल खातून मुस्तफीदीन को मंजूरी नामे फराहम करेगी। भारत और चीन ने मजमूई और तवील मुद्दती मफादात को मद्देनजर रखते हुए दोनों मुल्कों के सरहदी मसले के सियासी हल के लिए काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। आज पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ईद मिलादुन्नबी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और आर प्रगनंदा ने जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से हराकर ग्रैंड चेस टूर के आखिरी मरहले के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: श्यामाना जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालदल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं DTH की सर्विसेज, YouTube की आकाशवाणी आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल ऐप तथा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। प्रतिदिन ये विशेष प्रसारण आप तक पहुंचता है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। श्यामाना जी की यात्रा की जुड़ी सभी सूचनाएं हम आप तक पहुंचाते हैं, सभी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। जी श्रोताओं, इस वर्ष यात्रा 3 जुलाई को आरंभ हुई थी और जैसा कि आप जानते हैं यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है और 28 अगस्त को यह यात्रा अपने सफलपूर्वक संपन्न समापन पर पहुँचेगी। और अभी छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना अपने विधि विधान के अनुसार हो रही है, समय संचारी के हिसाब से हो रही है। और आज छड़ी मुबारक, आज और कल छड़ी मुबारक पंचतरणी में रात्रि विश्राम करेगी और 28 यानि परसों सुबह तड़के पवित्र गुफा पहुंचेगी। वहां महा आरती और पूजा के बाद ही इस वर्ष की यात्रा का समापन होगा। श्रोताओं, अमरनाथ जी की पवित्र गुफा कोई स्थानीय छोटा सा तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म की सबसे पावन आस्था का केंद्र है। पुराणों और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये वही गुफा है जहां देवों के देव महादेव ने माता पार्वती को सृष्टि की सबसे बड़े रहस्य यानी अमर कथा या अमरता का ज्ञान सुनाया था। कहा जाता है कि भगवान शिव नहीं चाहते थे कि इस परम ज्ञान को उनके और माता पार्वती के अलावा कोई भी तीसरा जीव सुन सके, इसलिए उन्होंने गुफा में प्रवेश करने से पहले अपने सारे आभूषण, वाहन और प्रतीकों का त्याग अलग अलग स्थानों पर कर दिया था। उन्होंने अपने वाहन नंदी को पहलगाम में छोड़ा, अपने मस्तक के चांद को चंदनवाड़ी में उतारा, गले के नाग को शेषनाग झील में विसर्जित किया और अपने पुत्र गणेश को महागुनस टॉप पर विश्राम दिया। इसके बाद उन्होंने पांचों तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को पंचतरणी में छोड़कर इस पवित्र गुफा में प्रवेश किया था। आज भी जब यात्री इन रास्तों से गुजरते हैं तो उन्हें हर स्थान पर भगवान शिव की प्रेजेंस का एहसास होता है। इस पवित्र गुफा में स्वयंभू रूप से बनने वाला शिवलिंग प्राचीन काल से ही भक्तों के लिए चमत्कार और परमास्था का प्रतीक रहा है। श्रोताओं, इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ इसका धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि इसका सांस्कृतिक

साहित्यिक पहलू भी है। ये यात्रा कश्मीरियत और गंगा जमुनी तहजीब की सबसे बड़ी मिसाल है। जब हजारों की संख्या में देश विदेश से तीर्थयात्री यहाँ पहुँचते हैं तो स्थानीय कश्मीरी भाई, चाहे वो घोड़े वाले हों, पिट्ठू वाले हों, तंबू लगाने वाले हों या दुकानदार हों, अपने मेहमानों की सेवा में दिन रात एक कर देते हैं। कठिन से कठिन पहाड़ी रास्तों पर यात्रियों का हाथ पकड़कर चलना, उन्हें सुरक्षित पवित्र गुफा तक पहुंचाना और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखना, ये कश्मीरी मेहमान नवाजी का सबसे सुंदर रूप है। एक तरफ पहाड़ों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की मुस्कुराहट और अपनापन हर यात्री का दिल जी लेता है। ये पवित्र यात्रा हमें सिखाती है कि आस्था और भाईचारा कैसे मजबूत होता है। ये सफर सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला एक पावन सांस्कृतिक संगम है।

श्रोताओं, सांस्कृतिक पहलू के बारे में हमने बात की, धार्मिक महत्व पर भी हमने बात किया। ये अब इस विशेष प्रसारण में नमकम चमकम सुनते हैं।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। अभी आप इस प्रसारण में नमकम चमकम सुन रहे थे। श्रोताओं, ये विशेष प्रसारण आप सुन पाते हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके साथ साथ हमारे श्रोता हमें सुन पाते हैं DTH की सर्विसेज, YouTube की आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, प्रतिदिन ये विशेष प्रसारण आप तक पहुंचता है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। इस वर्ष ये सिलसिला 3 जुलाई से शुरू हुआ था। 3 जुलाई से इस श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आरंभ हुआ था और इस विशेष प्रसारण का भी आरंभ हुआ था। और जैसा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और परसों श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का सफलपूर्वक संपन्न होगा, अपने समापन को पहुंचेगी श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 और इस विशेष प्रसारण का भी समापन उसी दिन होगा। और हमारी उम्मीद कि अगले वर्ष इस विशेष प्रसारण में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। फिलहाल इस विशेष प्रसारण के 2 दिन बाकी और श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के भी आखिर के 2 दिन बाकी है और अंतिम पड़ाव पर यात्रा पहुंच चुकी है, जहां छड़ी मुबारक की पूजा और अर्चना होती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना के साथ ही यात्रा की शुरुआत होती है और अंतिम चरण में भी छड़ी मुबारक की पूजा और अर्चना पवित्र गुफा में की जाती है। श्रोताओ, अब बारी है समाचार सुनने की।
1: सामईन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मसरत शाह। वजीर अजम नरेंद्र मोदी की सदारत में कल सेवा तीर्थ नई दिल्ली में प्रगति की 53वीं मीटिंग मुनाकद हुई। मीटिंग के दौरान वजीर अजम ने 9 रियासतों में फैले 30,000 करोड़ रुपए लागत वाले मुख्तलिफ सेक्टरों के 6 कलीदी नवीयत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर अजम ने अवामी में बहबूद के लिए इन प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि प्रोजेक्टों में ताखीर से उनके अखराज में इजाफा हो जाता है। उन्होंने प्रोजेक्टों के मयार को यकीनी बनाने और हर मरहले पर निगरानी के अमल को बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए-कार लाने पर जोर दिया। भारत ने चीन के साथ 2 तरफा रिश्तों को मुस्तहकम करने के साथ साथ देर पर तरक्की को यकीनी बनाने के लिए भारत चीन सरहदी इलाकों में अमन सुकून बरकरार रखने की अहमियत को उजागर किया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने कल बीजिंग में चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ खसूसी नुमाइंदों के मुजाकरात के 25वें राउंड की मुश्तरक सदारत की। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि दोनों खसूसी नुमाइंदों ने भारत चीन बाउंड्री क्वेश्चन के मामले पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद आज पूरे आलम इस्लाम में मजहबी जोश खरोश और तुस्क एहतिशाम के साथ मनाई जा रही है। इस ताल्लुक से आज वादी भर के खानकाहों, मसाजिद और जियारतगाहों में बड़े बड़े दीनी इज्तिमात मुनाकद हो रहे हैं। सबसे बड़ी तकरीब आसर शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनाकद हो रही है, जहां रात भर अकीदतमंद शब बेदारी में महव रहे। उन्होंने अपने गुनाहों की माफी तलब करने के साथ साथ मुल्क कौम की फलाह बहबूद के लिए दुआएं मांगी। दरगाह हजरत बल में आज लोग मोए मुकद्दस आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब हो रहे हैं।

अब्दुल्ला ने ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वजीर अला ने आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन, मोहब्बत, शफक्कत और अखुवत के आलमगीर पैगाम को आम करने पर जोर देते हुए यूटी में दायमी अमन, तरक्की और भाईचारे के लिए खसूसी दुआ की है। इसी दौरान नायब वजीर अला सुरेंद्र कुमार चौधरी और काबिनी वजरा सकीना इतू, सतीश शर्मा, जावेद राना, जावेद

0: है। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग और कई दीगर अहम शख्सियात ने भी ईद मिलाद के मौके पर यूटी के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। बिश्नाह के कानून साज असेंबली मेंबर डॉक्टर राजीव कुमार भगत ने लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मुन्ना सुना के साथ मुलाकात की और अपने हलके के मसाइल के बारे में उन्हें जानकारी दी। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जेएनके की यूटी काउंसिल के एक वफद ने के चेयरमैन इकराम अली शिफाई की क्यादत में एलजी से मुलाकात की और 29 अगस्त को श्रीनगर में मुलाकात होने वाले सीआईआई जेएनके हेल्थ कॉन्क्लेव के तीसरे शुमारे के बारे में जानकारी दी। दरियासना अहमदिया मुस्लिम जमात रेश नगरी शुपियां का एक वफद खुर्शीद अहमद मीर की क्यादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और उन्हें इलाके की तरक्याती जरूरत और मसाइल से आगाह किया। रियासी जिले में सालाना कौसर नाग यात्रा 2026 इख्तिताम पजीर हुई है। इस यात्रा में जिले से ताल्लुक रखने वाले 800 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने शिरकत की। यात्रा 21 अगस्त को रियासी से शुरू हुई और ये मुख्तलिफ मुकामात से गुजरकर 23 अगस्त को कौसर नाग सरोवर पहुंच गई, जहां पूजा और दीगर मजहबी रसूमात के साथ ये यात्रा इख्तिताम पजीर हुई। और अब दर्ज हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम के अलावा डीटीएच की सर्विसेज, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन एआईआर के मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, आइए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा देश विदेश से हमारे श्रोता हमें सुन पाते हैं YouTube के आकाशवाणी आराधना चैनल, DTH की विभिन्न सर्विसेज, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, अमरनाथ जी की यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है, ये हिमालय की बुलंदियों पर होती है, उन बुलंदियों पर जहां ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है, मौसम हर 5 मिनट में अपना रूप बदलता है और हर एक कदम भक्तों का धैर्य, शक्ति और आस्था की परीक्षा लेता है। भगवान शिव के दर्शन के लिए मुख्य रूप से दो रास्ते हैं, पहला है पहलगाम मार्ग और दूसरा है बालतल मार्ग। पहलगाम का मार्ग पारंपरिक मार्ग है, ऐतिहासिक रास्ता है, 48 किलोमीटर लंबा रास्ता जिसे पूरा करने में यात्रियों को 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। इस रास्ते की सबसे खास बात यह है कि पवित्र छड़ी मुबारक इसी ऐतिहासिक रास्ते से होकर पवित्र गुफा तक जाती है। पहलगाम से चंदनवाड़ी का मुख्य शिविर, इस पावन सफर की शुरुआत खूबसूरत पहलगाम से होती है, जहां लिदर नदी की कलकल बहती धारा और देवदर के घने पेड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं। पहलगाम से लगभग 16 किलोमीटर आगे बढ़ने पर आता है चंदनवाड़ी, जो कि 2895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पहला मुख्य शिविर है। यहां तक गाड़ियों से आया जा सकता है, लेकिन इसके आगे का सफर पैदल, घोड़े या पिट्ठू के जरिए ही पूरा होता है। उसके बाद हम चंदनवाड़ी से होकर पहुंचते हैं पिस्सू टॉप, जो कि कठिन चढ़ाई है। श्रोताओं, चंदनवाड़ी को पार करते ही शुरू होता है पिस्सू टॉप, वो प्रसिद्ध और ऐतिहासिक खड़ी चढ़ाई। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि देवताओं और दैत्यों के बीच हुए युद्ध में देवताओं ने दैत्यों का संहार करके उनके शवों से एक पहाड़ बना दिया था, जिसे आज पिस्सू टॉप कहा जाता है। इस कठिन चढ़ाई को पार करते वक्त यात्रियों की सांस फूलने लगती है, लेकिन हर हर महादेव के जयकारे उन्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं। पिस्सू टॉप के बाद कहां जाते हैं हमारे तीर्थ यात्री, ये आपको बताते हैं। पहले आप ये भजन सुनिए।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं और अभी हम आपको पहलगाम के पारंपरिक मार्ग के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे और ये बता रहे थे कि चंदनवाड़ी से पिसो टॉप होते हुए हमारे यात्री आगे कहाँ बढ़ते हैं और उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र में मौसम बदलता है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर ऑक्सीजन की कमी भी होती है, पर हमारे भक्तों का शिव भक्तों के कदम बिल्कुल नहीं रखते। पिसो टॉप की चढ़ाई पूरे करने के बाद वो पहुंचते हैं शेषनाग झील, जो लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों के बीच घिरे नीले रंग के कांच जैसे ट्रांसपेरेंट पानी वाली ये झील इतनी अद्भुत और मनमोहक है कि उसकी सुंदरता देखकर यात्रियों की सारी थकावट पल भर में दूर हो जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने गले के नाक को इसी झील में त्यागा था जब वो अमर कथा सुनाने के लिए माता पार्वती को पवित्र गुफा तक ले गए थे। शेषनाग से आगे बढ़ते हुए आता है महागुना स्टॉप। ये इस रास्ते का सबसे ऊंचा और सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव है। श्रोताओं, महागुना स्टॉप समुद्र स्थल से लगभग 4,200 मीटर की बुलंदी पर है। यहाँ पहुँचते ही ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हवा में ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है। महागुना स्टॉप को पार करना यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी शारीरिक चुनौती होती है, क्योंकि समुद्र स्थल से 4,200 मीटर की ऊंचाई पर है, ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में कम है और इस वजह से यात्रियों के लिए ज़रा चुनौती होती है इस महागुना स्टॉप को पार करना। महागुना स्टॉप की बुलंदी को पार करने के बाद रास्ता नीचे पंचतरणी की घाटी में उतरना है। पंचतरणी लगभग 3,657 मीटर की ऊंचाई पर है। ये वही पावन स्थान है जहां भगवान शिव ने अपने पांचों तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का त्याग किया था। यहां पांच अलग अलग छोटी नदियां एक साथ बहती हैं। श्रोताओं, आज यानी 26 अगस्त को पवित्र छड़ी मुबारक शेषनाग से आगे बढ़ते हुए महागुना स्टॉप को पार करके पंचतरणी पहुंच चुकी है। अगले 2 दिनों तक छड़ी मुबारक इस पंचतरणी के शिविर में ही प्रस्थान करेगी, विश्राम करेगी, जहां हवन विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। पंचतरणी से अगले 6 किलोमीटर की अंतिम चढ़ाई के बाद भक्त पवित्र गुफा पहुँचते हैं और जैसा कि आप जानते हैं समय काटने के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से पवित्र छड़ी मुबारक 2 रात्रि विश्राम के बाद परसों सुबह तड़के पवित्र गुफा पहुंचेगी, जहां पे महा आरती और महापूजन होगा। ये था पहलगाम का पारंपरिक मार्ग, जिसके अलग अलग विश्राम स्थान हैं, जैसे कि चंदनवाड़ी, पंचतरणी, शेषनाग झील, जहां से गुजरकर तीर्थ यात्री पवित्र गुफा पहुंचते हैं। ऐतिहासिक मार्ग है, अक्सर देखा जाता है कि हमारे तीर्थ यात्री इसी मार्ग से पवित्र गुफा तक जाना पसंद करते हैं। श्रोताओं, आइए कुछ और भजन सुनते हैं और उसके बाद आपको दूसरे मार्ग के बारे में बताएंगे, जहां से हमारे तीर्थयात्री पैदल चलकर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में जाते हैं बम बम बोले के जयकारों के बीच।

श्यामाना जी, यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा हमारे श्रोता हमें सुनते हैं न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल तथा डीटीएच की सर्विसेज पर। श्रोताओं, श्यामानाथ जी, यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में हम यात्रा के मार्गों के बारे में बात कर रहे थे। हमने पहलगाम के पारंपरिक मार्ग के बारे में बात की और अब हम यात्रा के सबसे रोमांचक और तेज रास्ते के बारे में बात करने वाले हैं, वो है बालतल वाला मार्ग। अगर यात्रियों के पास समय कम होता है और साहस पूरा होता है, यानी कि स्टैमिना अच्छा खासा होता है, और वो महादेव के चरणों में पहुंचना चाहते हैं, तो बालतल मार्ग से ही वो यात्री जाते हैं। श्रोताओ, बालतल जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले में स्थित है, जहां पहलगाम वाला पारंपरिक मार्ग 48 किलोमीटर लंबा और 3 से 4 दिन का सफर है, वहीं बालतल मार्ग सिर्फ 14 किलोमीटर लंबा है। लेकिन ये 14 किलोमीटर का सफर बहुत ही कठिन है, क्योंकि बालतल मार्ग से सीढ़ी चढ़ाई होती है, जहां हर एक कदम यात्री के स्टैमिना और आस्था को आजमाता है। ये सफर शुरू होता है बालतल के विशाल शिविर से, जो सिंध नदी के किनारे खूबसूरत घाटी में बसाया गया है। यहाँ हजारों यात्रियों के विश्राम के लिए तंबू, गर्मा गर्म सात्विक लंगर और सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। यहाँ का माहौल 24 घंटे हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहता है। बालतल शिविर से लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़ते ही आता है दुमेल। यहाँ यात्रियों के पहचान पत्र और दस्तावेजों की जाँच होती है। इसके बाद यहाँ से मुख्य पैदल और घोड़े का सफर शुरू होता है। श्रोताओं, दुमैल को पार करने के बाद रास्ता अत्यधिक खड़ा, पतला और चुनौतीपूर्ण होने लगता है। इस रास्ते का सबसे प्रसिद्ध और कठिन पड़ाव है ब्रारी मार्ग। पहाड़ को काटकर बनाया गया ये रास्ता बहुत ही पतला है। एक तरफ बर्फ और पत्थरों से ढके ऊंचे पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। यहाँ एक एक कदम बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है। ब्रारी मार्ग को पार करके यात्री संगम पहुंचते हैं, जहां पहलगाम और बालतल दोनों रास्ते आकर मिल जाते हैं। संगम से पवित्र गुफा की दूरी सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की ही रह जाती है। श्रोताओ, बालतल मार्ग की खास बात यह है कि एक ही दिन में दर्शन करके यात्री जो है वापस आ जाते हैं। स्वस्थ यात्री जो होते हैं वो सुबह तड़के 4 बजे अगर बालतल से रवाना होते हैं तो 4 से 5 घंटे में पवित्र गुफा पहुंचकर दर्शन करते हैं और शाम होने से पहले वो वापस बालतल शिविर लौट आते हैं। श्रोताओ, खड़ी चढ़ाई होने के कारण यहाँ मौसम का प्रभाव तुरंत दिखता है। एक पल में खिली धूप होती है तो अगले ही पल तेज बारिश या भूस्खलन होने लग सकते हैं। तापमान अक्सर 0 तक पहुंच जाता है। इस वजह से

श्रोताओं, कठिन चढ़ाइयों को पार करके ही यात्री पहुंचते हैं पवित्र गुफा, जहां ऊंची ऊंची वादियों में रहते हैं बोले शंकर।

0: अरे भाई कहाँ जा रहे हो?
1: मंदिर जा रहा हूँ।
0: मंदिर तो बंद है, मंदिर पूरे एक साल बाद खुलेगा।

श्यामाना जी, यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन पा रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा आप हमें सुन पाते हैं YouTube की आकाशवाणी आराधना चैनल, वेज OTT प्लेटफॉर्म, न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप तथा DTH की सर्विसेज पर।

श्रोताओं, प्रतिदिन ये विशेष प्रसारण आप सुन पाते हैं सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी कोशिश रहती है कि यात्रा से जुड़ी सभी सूचनाएं हम आप तक पहुंचा सकें इस विशेष प्रसारण के जरिए।

श्री अमरनाथ जी, यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन पा रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर शिव भजन आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, 12 बजने वाले हैं चंद ही लम्हों में। हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार फिर से जुड़ेंगे आपसे इसी विशेष प्रसारण में, जहां श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी सभी सूचनाएं, सभी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। अगर आप हमारे इस विशेष प्रसारण में हमसे जुड़ना चाहें तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9596990954 पे, यानी कि 9596990954, या हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanibaltal@gmail.com। इन दोनों ही जरियों से आप हम तक पहुंच सकते हैं, मैसेजेस के जरिए व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। ये चल रहे हैं आपको आकाशवाणी दिल्ली समाचारों के लिए। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा

0: नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल पंजाब और हरियाणा के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन कर रहा है। ये संवाद मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस और युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के दृष्टिकोण को एक साथ जोड़ना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेइचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडर से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मजबूत कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य मौसमी इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरल में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम्मा भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में बताया कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 77,751 पर और निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,308 पर आ गया। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा अंतिम मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में भोजन अवकाश तक 2 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। श्रीलंका पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 अंक बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्यामाना जी, यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, एक बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प बात करते हैं। जब हमारे भक्त अंधियाली पहाड़ी और बर्फीले रास्तों के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं, तो उनके सामने होते हैं दो विकल्प। एक है बालतल वाला मार्ग, दूसरा है पहलगाम वाला मार्ग। इन दोनों ही पावन रास्तों की आपस में तुलना करते हुए देखते हैं कि सफ़र का सही चुनाव कैसे किया जाए। पहले सबसे बड़ा अंतर इन रास्तों की लंबाई और समय का है। जहां बालतल मार्ग सिर्फ 14 किलोमीटर का एक छोटा सा रास्ता है, वहीं पहलगाम मार्ग लगभग 48 किलोमीटर लंबा रास्ता है। बालतल से यात्री एक ही दिन में सुबह चढ़ाई करके दर्शन के बाद शाम तक वापस बेस कैंप लौट आते हैं, तभी पहलगाम मार्ग से दर्शन पूरे करने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। चढ़ाई और कठिनाई की बात करें तो बालतल मार्ग की चढ़ाई खड़ी चढ़ाई है, सीधी है और चुनौतीपूर्ण है। वहाँ का रास्ता पतला होने के कारण शारीरिक रूप से काफ़ी थकावट हो जाती है। दूसरी तरफ पहलगाम के पारंपरिक मार्ग से रास्ते की बात करें तो रास्ता चौड़ा और ढलान वाला है, जहाँ चढ़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसलिए पहली बार जाने वाले बुजुर्ग और बच्चों के लिए पहलगाम वाला रास्ता ज़्यादा आरामदायक माना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता की बात करते हैं और धार्मिक महत्व की जब बात करते हैं तो पहलगाम वाला मार्ग बाजी मार लेता है। इस ऐतिहासिक रास्ते में देवदर के घने जंगल, लिदर नदी और शिशनाग जैसी नीले पानी की अद्भुत झील के दर्शन होते हैं। साथ ही पवित्र छड़ी मुबारक भी इसी रास्ते से आगे बढ़ती है। इसके विकल्प अगर हम बालतल मार्ग पर रास्ते की बात करें तो ऊंची ऊंची गहरी घाटियां और पत्थर से भरे रोमांचक पहाड़ दिखते हैं, पर प्राकृतिक विविधता कम मिलती है। सुविधाओं की दृष्टि से देखें तो पहलगाम मार्ग पर जगह जगह विश्राम शिविर, भंडारे और चिकित्सा केंद्र काफ़ी अच्छी संख्या में हैं, क्योंकि रास्ता लंबा है, 3 से 4 दिन लंबे टाइम लग जाता है यात्रियों को पहलगाम के मार्ग से पवित्र गुफा तक पहुंचने में। वहीं बालतल मार्ग छोटा होने के कारण आपातकाल में जल्दी वापसी का रास्ता ज़रूर देता है, लेकिन मौसम में यहाँ कभी भी बदलाव आ सकता है और इस वजह से सुरक्षा का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है और NDRF SDRF की टीम्स वहाँ पर तैनात होती हैं। श्रोताओं, अगर आपके पास समय कम है और शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हैं तो बालतल मार्ग आपके लिए है। अगर आप अगले वर्ष श्यामाना जी यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप इन दोनों ही मार्गों से यात्रा पर जा सकते हैं, और अगर आप शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हैं तो बालतल मार्ग से आप एक ही दिन में यात्रा करके वापस भी लौट सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रकृति के साथ आत्मिक आनंद लेते हुए आराम से यात्रा करना चाहते हैं तो पहलगाम रास्ता चुनें और पहलगाम के पारंपरिक मार्ग से ही पवित्र यात्रा पर जाएं और पवित्र शिवलिंगम के दर्शन करें।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ही विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं YouTube के आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा DTH सर्विसेज पर।

श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अभी तक आप ये विशेष प्रसारण आपकी साथी इरम कुरैशी के साथ सुन रहे थे। अब आपके साथ जुड़ेंगे हमारी साथी उद्घोषिका फरजाना, उनके साथ आप ये विशेष प्रसारण सुनेंगे ठीक शाम 6 बजे तक।

श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन पा रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा हमारे श्रोता हमें सुन पाते हैं देश के विभिन्न कोनों से डीटीएच की सर्विसेज, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप तथा वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने वाले हैं, अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां से आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार इस विशेष प्रसारण में फिर आपके साथ जुड़ेंगे श्यामाना जी यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां लिए। सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थान बना चुका है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत में परिवर्तन संरचनात्मक है और तेजी से होते शहरीकरण, मध्यम वर्गीय का स्तर बढ़ने और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का इसमें अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नए अवसर सृजित कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं में भारत के डिजिटल तंत्र का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जोड़ने का अवसर मिलेगा। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में

0: सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उच्च अधिकारियों और हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में पायलटों और चालक दल के सदस्यों के शरीर में मनोसक्रिय पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने वाला मोका डोप टेस्ट सिस्टम और नागर विमानन आवश्यकताओं CAR में जरूरी बदलावों पर चर्चा हो रही है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक और एयरलाइन ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। अब तक इसके 2,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और इस संक्रमण से होने वाली बीमारी और मौतों की निगरानी कर रही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। नॉर्वे में कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में की जा रही ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन किया। नॉर्वे की संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बरता और हिंसा का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAEC के साथ एकजुटता दिखाते हुए इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को खत्म करने की मांग की। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P. हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया। भारत ने नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट में किए गए उल्लेखों का इन लोखे को खारिज कर दिया है। भारत ने इन्हें राजनीति से प्रेरित और बेहद दुर्भावनापूर्ण बताया। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ICERD के तहत भारत की 11वीं आवधिक समीक्षा के बाद समिति की रिपोर्ट को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इसमें रचनात्मक ढंग से भाग लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए भारत और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल यूक्रेन के 35वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूक्रेन के नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले में चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं। श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India stands as the fastest growing major economy in the world and offers a unique combination of scale, sustained growth, a young population, expanding consumption and rapidly deepening capital markets. Addressing prominent members of the Indian business community in Toronto today, Sitharaman said India's transformation is structural, driven by rapid urbanization, a growing middle class, and world-class digital infrastructure. She noted that these developments are creating new opportunities across virtually every sector of the economy. The finance minister also highlighted the role of India's digital ecosystem in transforming access to financial and commercial services. She underlined significant opportunities for collaboration with Canadian banks, fintech companies and regulators, not only in payments but also in shaping the next generation of digital financial infrastructure. India's

आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7, FM पहलगाम 100.1, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, आज का ये प्रोग्राम बेहद खास है क्योंकि हम बात कर रहे हैं श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के उस सबसे पवित्र और आखिरी पड़ाव की जिसका हर भक्त को साल भर इंतजार रहता है। जी हाँ, कश्मीर की वादियों से लेकर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक पूरा माहौल इस वक्त महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। आप जानते हैं कि छड़ी मुबारक यात्रा जो है वो जारी है और आपके साथ इस यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे संग FM बालतल FM पहलगाम के संग।

जुलाई 2026 को शुरू हुई इस साल की अमरनाथ यात्रा अब अपने आखिरी और सबसे पवित्र चरण में पहुंच चुकी है। जी हां श्रोताओं, इस साल अब तक 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जो कि एक बेहद शुभ और बड़ा आंकड़ा है। हालांकि खराब मौसम और ट्रैक्स की मरम्मत की वजह से आम यात्रियों के लिए यात्रा को कुछ दिन पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन पवित्र छड़ी मुबारक की रस्म और उसके साथ चलने वाली पारंपरिक यात्रा पूरे विधि विधान के साथ आगे बढ़ रही है। जी हाँ, छड़ी मुबारक उस पवित्र शक्ति रूपी जो छड़ी मुबारक है, जो भगवान शिव की पवित्र लाठी है, महंत दीपेंद्र गिरी जी की नेतृत्व में मैं साधु संतों का ये पवित्र जठा श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा से रवाना हुआ था। और कल की अगर बात करें 25 अगस्त की, तो पवित्र छड़ी मुबारक जो है शीशनाग पहुंची थी, जहां सूरम्य झील के किनारे बेहद भव्य और अलौकिक संध्या आरती हुई। आज की अगर बात करें, यानी कि 26 अगस्त की अगर बात करें, तो आज छड़ी मुबारक पहुंच चुकी है पंचतरणी, जहां अगले दो दिन यानी कि 26 अगस्त और 27 अगस्त जो है दो दिन तक यानी कल रात तक आरती और रात्रि विश्राम होगा, और 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन जो है सूर्योदय के से पहले छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रवेश करेगी। वहां वैदिक मंत्रों के साथ मुख्य पूजा होगी और इसके साथ ही साल 2026 की यात्रा का औपचारिक समापन हो जाएगा। 30 अगस्त की अगर बात करें, तो पहलगाम में जल विसर्जन और भंडारे के साथ ये पूरी प्राचीन प्रथा संपन्न होगी। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि छड़ी मुबारक का गुफा तक पहुंचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? शास्त्रों के मुताबिक ये वही पवित्र गुफा है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने की कथा यानी अमर

कथा सुनाई थी। जब परसों श्रवण पूर्णिमा के दिन शिव और शक्ति स्वरूप इस छड़ी का गुफा में प्रवेश होगा तो वो पल हर श्रद्धालु के लिए जीवन धन्य करने वाला होता है। तो चलिए इस भक्तिमय माहौल में सुनते हैं एक प्यारा सा भजन और फिर लौटेंगे आपके साथ जो है ताज़ा जानकारियों के साथ। आप सुनते रहिए FM बालतल, FM पहलगाम और इसके अलावा आप हमें DTH और न्यूज़ ऑन AIR की आराधना सर्विस पर भी सुन पा रहे हैं।

पहलगाम डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर के हिमालयाज में लगभग 3,888 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित एक पवित्र गुफा की यात्रा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस गुफा के अंदर बर्फ से एक भव्य और प्राचीन शिवलिंग का निर्माण होता है जो चांद के घटने और बढ़ने के

किस्से को सुन लिया और वो अमर हो गए। आज भी लोगों को गुफा में वो कबूतर दिखते हैं। और पुराने समय में ऋषि भृगु ने सबसे पहले इस गुफा के दर्शन किए थे। इतिहासकार बताते हैं कि बीच के दौर में ये गुफा लोग भूल गए थे। 15वीं या 18वीं सदी में बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे ने इसकी दोबारा खोज की। कहा जाता है कि एक साधु ने उसे कोयले की भरी भोरी दी जो घर आकर सोने के सिक्कों में बदल गई। जब वो साधु का शुक्रिया अदा करने लौटा तो वहां उसे ये पवित्र गुफा और बर्फ का शिवलिंग मिला। तब से यात्रा का आधुनिक दौर शुरू हुआ। पहले के समय और आज के दौर में अमरनाथ यात्रा का तरीका, सुविधाएं और प्रशासन पूरी तरह बदल चुके हैं। पुराने समय में यात्रा एक छोटा और लोकल इवेंट होता था। इसका इंतजाम लोकल पंडित, महंत और चरवाहे जो मलिक परिवार था वो मिलकर करते थे। सन 2000 में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का गठन हुआ। अब पूरी यात्रा का कंट्रोल गवर्नमेंट और SASB के हाथ में है जो सेफ्टी, मेडिकल और रजिस्ट्रेशन को हैंडल करते हैं। पुराने समय में यात्रा सिर्फ कुछ ही दिनों की होती थी जो प्राचीन प्रथा के मुताबिक श्रवण पूर्णिमा के आसपास खत्म होती थी। अब अगर हम देखें तो इस यात्रा को बढ़ाकर 38 से 60 दिनों तक कर दिया गया है ताकि देश विदेश से लाखों लोग जो हैं वो दर्शन कर सकें। शुरुआत में हर साल सिर्फ कुछ सौ या कुछ हजार साधु और श्रद्धालु ही इतनी मुश्किल चढ़ाई जो है वो कर पाते थे। अब हर साल 4 लाख से 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा करते हैं। अगर हम हर रोज की बात करें तो हर रोज यात्रियों की संख्या को अब 10,000 पर कैप किया जाता है ताकि भीड़ को जो है मैनेज किया जा सके। श्रद्धालुओं को सिर्फ पहलगाम के लंबे और बेहद कठिन रास्ते से पैदल चलना पड़ता था अगर हम पहले की बात करें, लेकिन उस टाइम पर रास्ते कच्चे थे, खतरनाक थे और बिना किसी सहारे के होते थे। अब दो रास्ते हैं, पहलगाम का प्राचीन मार्ग और बालतल का 14 किलोमीटर का रास्ता। रास्तों को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने बड़ा और चौड़ा कर दिया है जहां रेलिंग्स और मॉडर्न लाइटिंग लगाई गई है। अब पैदल चलने के अलावा हेलीकॉप्टर सर्विस, घोड़े खच्चर और पालकी की हाईटेक सुविधा मौजूद है। अब तो सरकार अमरनाथ मार्ग और रेलवे लाइन पर भी काम कर रही है। सुरक्षा के नाम पे पहले कुछ नहीं होता था और खराब मौसम या लैंडस्लाइड्स के दौरान लोग रास्ता भटक जाते थे, लेकिन अगर अब की बात करें तो सुरक्षा बेहद कड़ी है। हर एक यात्री को RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग पहनाना जरूरी है ताकि उन्हें सैटेलाइट से ट्रैक किया जा सके। पूरे ट्रैक पर मेडिकल कैंप्स, ऑक्सीजन बूथ्स और भंडारे होते हैं। बिना कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट किसी की भी अब रजिस्ट्रेशन नहीं होती है।

साल 4,80,000 से ज़्यादा भक्तों ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं और ये यात्रा सफल इसलिए है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और लोकल कश्मीरियों कश्मीरी भाइयों की वजह से। और हम जानते हैं कि सरकार ने हर यात्री को RFID टैग्स दिए थे ताकि सभी सुरक्षित रहे। आप सोचिए 13,500 फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन कम हो जाती है, वहां हमारे जवान और लोकल लोग भंडारा लगाकर गर्म खाना और ऑक्सीजन देते हैं। उन सभी के जज्बे को हमारा सलाम है। जी हां, यहां पर आपको बता दें कि अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज़, जहाँ से आप समाचार सुनेंगे और समाचारों के उस पार हम आपके साथ वापस जुड़ेंगे इस यात्रा की जो या जानकारियाँ हैं आप तक पहुँचाने के लिए, आपके साथ शेयर करेंगे और भी इन्फॉर्मेशन्स। आप बने रहिए हमारे संग FM बालतल 103.7, FM पहलगाम 100.1, DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप, आकाशवाणी आराधना चैनल के ज़रिए।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय कारोबारी बिरादरी के सरकर्ता अरकान से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत की अक्सर तब्दीली ढांचा जाति, शहरों के तेजी से फरोख और आलमी मेयार के डिजिटल बुनियादी ढांचे पर मबनी है। भारतीय तिब्बी एसोसिएशन ने मुल्क में H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के सिलसिले में सेहत आमा से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। उसने कहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चौकन्ने रहें। ओनम का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हज़रत मोहम्मद का योम पैदाइश, ईद मिलादुल नबी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। आइंदा दो रोज़ के दौरान मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। और क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन कराया है। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी रफ्तारी के साथ तरक्की करने वाली एक अहम मईशत है और मुल्क में लगातार तरक्की, नौजवान आबादी, खपत में बढ़ोतरी और तेजी से फरोख पाते हुए सरमाया बाजार मौजूद हैं। उन्होंने ये बात आज टोरंटो में भारत के कारोबारी तबके के सरकर्ता अरकान से खिताब करते हुए कही। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत में शहरों के तेजी से फरोख, मुतवस्सित तबके की तरक्की और आलमी मेयार के डिजिटल बुनियादी ढांचे के नतीजे में यकसर कायापलट हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात से मईशत के लगभग हर तबके के लिए नित नए मौके पैदा हो रहे हैं। भारत और कनाडा के दरमियान बढ़ती हुई इक्तसादी शराकतदारी की अहमियत को उजागर करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि कनाडा में

0: मौजूद भारतीय बाशिंदे दोनों मुल्कों के दरमियान एक कलीदी पुल के तौर पर काम कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। मस्कूरा प्रोग्राम को खेलों के कौमी दिन 2026 के जश्न के हिस्से के तौर पर मेरा युवा भारत माई भारत की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के हर एक ज़िले में दो कॉलेजों में नौजवानों की शमूलियत के साथ मुल्क भर में मुनक्किद किया जाएगा। इसमें खेलों, नौजवान लीडरशिप, समाजी जिम्मेदारी, रजाकाराना खिदमात, फिटनेस और मुल्क की तामीर को एक मुश्तरक प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाया जाएगा, जिससे नौजवानों को मुल्क की खेलों से मुतालिक उमंगों में अमली तौर पर शामिल होने का मौका मिलेगा और इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि नौजवानों के ख्यालात और नुक्ताए नज़र को भारत के नौजवानों और खेलों से मुतालिक इको निज़ाम के ताल्लुक से जारी बातचीत का एक हिस्सा बनाया जा सके। प्रोग्राम में नौजवान माई भारत रजाकार, मकामी खिलाड़ी और अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस पहल के नुमाया हिस्से के तौर पर खेलों में दिलचस्पी रखने वाले नौजवान सरकर्दा भारतीय खिलाड़ियों और तमगा हासिल करने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम की एक मरकजी खसूसियत युवा संवाद होगा, जिसमें नौजवान शुरका को उनके ख्याल, नुक़ नज़र और उमंगों पर बात करने के लिए मदू किया जाएगा। ये बातचीत 5 मौजूद पर होगी, जिनमें खेल, ओलंपिक से मुतालिक उमंगें, नौजवान कयादत, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया डायलॉग का मकसद नौजवानों की कयादत में एक मजबूत विकसित भारत की खातिर अपनी उमंगें और नज़रियात का इश्तराक करते हुए मुल्क के खेलों के सफ़र में नौजवानों को शामिल करना है। इसका इनेकाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक फिट, मुनज़्ज़म और ज़ब्त पर मबनी और खेलों को फ़रोग देने वाले मुल्क के नज़रिए से मुताबिकत रखता है, जिससे नौजवानों की उमंगों को कौमी तरक्की के एजेंडा में मरकज़ी हैसियत हासिल हो सके। भारत ने पुरजोर अल्फाज में कहा है कि अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की फौरी तरजीह इंसानियत को दरपेश मसाइल को दूर करने के इकदामात होने चाहिए, जिसका उन्हें लड़ाई की वजह से सामना करना पड़ रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने सलामती काउंसिल में इस सिलसिले में एक खुली बहस में इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। उन्होंने बिला रुकावट इंसानी रसाई, महफूज और लड़ाई झगड़ों से पाक मुअसर इंतजाम की ज़रूरत को उजागर किया। उन्होंने सलामती काउंसिल पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उसके इकदाम में ऐसी पाबंदियाँ शामिल होनी चाहिए जिनसे इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में दानिस्ता तौर पर रुकावट ना पड़े और जायज़ ज़रई तजारत और खुराक की फराहमी जारी रहनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत की मेडिकल एसोसिएशन ने अवाम पर जोर दिया है कि वो H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के बारे में होशियार और चौकस रहें। उसने ये भी कहा है कि मौसम की वजह से ये बीमारी बढ़ रही है और इससे मुतासर ज़्यादातर लोगों में ये एक हद तक रहता है और ये मामूली किस्म का होता है। उसने लोगों को मशवरा दिया है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि ये H1N1 एक वायरल इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक्स से इसके जरासीम ख़त्म नहीं होते। मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि जब कोई अहल मेडिकल पेशेवर शख्स तजवीज़ करे तभी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया भर में केरलम के बाशिंदे तिरु ओनम मना रहे हैं, जो ओनम का सबसे पवित्र दिन है। हमारे नामानिकार ने खबर दी है कि तिरु ओनम तकरीबात का आगाज़ ओना पुक्कलम से हुआ, जो बादशाह महाबली के खैर मकदम के लिए फूलों का एक रिवायती कालीन है। फसल की कटाई का ये त्यौहार केरलम के लोग जात मजहब से कतई नज़र मना रहे हैं। मंदिरों में खसूसी पूजा का अहतमाम किया जा रहा है, जिनमें सबरीमला, अरनमुला और गुरुवयूर शामिल हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम पैदाइश ईद मिलादुन नबी भी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मिलाद महफिलों और सीरत नबवी कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद की हयात तैयबा को उजागर किया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओनम और ईद मिलादुन नबी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने अगले 2 रोज़ के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान दिल्ली के हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ साथ कल बहुत हल्की से हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। ओडिशा में महानदी में तुगयानी आने के बाद सैलाब से मुतालिक तशवीश में एक बार फिर इजाफा हो गया है। बैतरणी में भी पानी की सतह बढ़ गई है, जबकि भद्रक ज़िले में चांदबाली में भी सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो गई है और मुख्तलिफ गांव सेरे आब आ गए हैं। नस्ली भेदभाव को ख़त्म करने से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा कमेटी की रिपोर्ट में दिए गए हवालों को भारत ने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये इंतहाई शरंगेज हैं, नीज इनके पीछे सियासी मकासद कार फरमा है। नस्ली तासब को ख़त्म करने से मुतालिक बैनुल अक्वामी कन्वेंशन के 11वें जायजे की आलमी इदारे की इस रिपोर्ट के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस कमेटी की मीटिंग में तामीरी जज्बे से शिरकत की थी। उन्होंने ये भी कहा कि साल 1960 में इस कमेटी का मुसविदा बनाने और इसकी तैयारी में भारत ने कायदाना रोल अदा किया था और भारत नस्ली भेदभाव और तासुब के खिलाफ जद्दोजहद में गैर मुतजलजल यकीन रखता है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन के आवाम को योम आज़ादी की मुबारकबाद देने पर भारत और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का शुक्रिया अदा किया है। सदर मुर्मू ने कल यूक्रेन के 35वें योम आज़ादी के मौके पर वहां के आवाम को मुबारकबाद दी थी। मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट मैच में अब से कुछ देर पहले श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 163 रन बना लिए थे। भारत ने पहले इनिंग्स में श्रीलंका को 290 रन पर ऑल आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया था। आखिरी दिन के खेल से पहले श्रीलंका ने 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलना शुरू किया और महज 25 रन स्कोर किए। श्रीलंका के ऑलराउंडर सोनल दिनुषा ने लगातार अपनी दूसरी सेंचुरी बनाते हुए 103 रन बनाए। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय कारोबारी बिरादरी के सरकर्ता अरकान से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत की अक्सर तब्दीली ढांचा जाति शहरों के तेजी से फरोख और आलमी मेयार के डिजिटल बुनियादी ढांचे पर मबनी है। भारतीय तिब्बी एसोसिएशन ने मुल्क में H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के सिलसिले में सेहत आमा से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। उसने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ चौकन्ने रहें। ओनम का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हज़रत मोहम्मद का योम पैदाइश ईद मिलादुल नबी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। आइंदा 2 रोज़ के दौरान मशरकी और शुमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। और क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन कराया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Toronto, Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization, and world-class digital infrastructure. Chief Minister Rekha Gupta launches Delhi Lakshmi Yojana, hands over approval letters to 2,500 beneficiaries. Indian Medical Association issues public health advisory on H1N1 influenza spread in country, says no cause for panic, just heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with traditional fervor. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad Eid Milad al-Nabi been celebrated in various parts of the country. Heavy rainfall to prevail over eastern and northeastern states for the next 2 days. And in cricket, India asks for Sri Lanka to follow on in the Colombo Test match. Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India stands as the fastest growing major economy in the world and offers a unique combination of scale, sustained growth, a young population, expanding consumption and rapidly deepening capital markets. Addressing prominent members of the Indian business community in Toronto today, Sitharaman said India's transformation is structural, driven by rapid urbanization, a growing middle class, and world-class digital infrastructure. She noted that these developments are creating new opportunities across virtually every sector of the economy.
2: India today stands as the fastest growing major economy in the world. India's

0: will be unveiled by Defence Minister Rajnath Singh in Goa today. The memorial is a tribute to Goa's freedom struggle and seeks to preserve the memory of the sacrifices made during the liberation movement. The memorial will honour the 31 Satyagrahis who were killed by Portuguese soldiers in 1955 while trying to enter Goa with demand for inclusion in India. The India Meteorological Department, IMD, has said that subdued rainfall activity is likely to continue over peninsular India during the next week. Heavy rainfall will prevail over Bihar, Chhattisgarh, eastern Uttar Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and northeastern states during the next 2 days. The Met Department has also predicted thunderstorms with lightning and gusty winds likely to prevail over Uttarakhand, eastern Rajasthan, Andhra Pradesh and Andaman and Nicobar Islands till Saturday. Parts of Delhi are expected to witness generally cloudy sky with possibility of very light to light rain tomorrow. Flood concerns have resurfaced in Odisha with the Mahanadi swelling following rainfall in its upper catchment areas in Chhattisgarh. We have more from a correspondent.
1: In Odisha, the flood situation remains a concern in several areas despite water levels in major rivers showing a receding trend. About 670,000 cubic of water reached Mundali in Cuttack following rainfall in the upper catchment areas, raising the possibility of a rise in Mahanadi levels. The Baitarani has flooded again in Bhadrak, with Chandbali witnessing its third flood. More than 1 lakh people remain affected across 6 districts with 79 rescue teams deployed. The state government has said presently no flood situation in the Salandhi, Subarnarekha and Brahmani rivers. The IMD has issued no rainfall warning for Odisha today but has forecast heavy rain tomorrow and very heavy rain at isolated places this weekend. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: In men's cricket, host Sri Lanka were 179 for 3 against India in the second innings on the fourth day of the second test in Colombo when reports last came in. Earlier, India enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290. In the first innings. Resuming the first innings at 265 for 8 this morning, the hosts managed to add only 25 runs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Toronto, Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. Chief Minister Rekha Gupta launches Delhi Lakshmi Yojana, hands over approval letters to 2,500 beneficiaries, and Indian Medical Association issues public health advisory on H1N1 influenza spread in country, says no cause for panic, just heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with tradition fervor. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad, Eid Miladun Nabi, been celebrated in various parts of the country. And with that, we end the Midday News.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
3: India today stands as the fastest.
4: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।

0: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
1: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
0: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस हैव सीन।
2: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
0: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
1: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
3: फूड इनसिक्योरिटी रिमेन्स।
4: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
3: हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश के प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
5: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सिलिन, क्लूवेंटलेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। आईएमए ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना लगातार

0: लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट तथा आईसीएआर एआईईए पीजी और एआईसीई पीएचडी 2026 परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार भारती के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दासगुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरुणमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित है। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए है। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी।

0: समाचार भुवनेश्वर।
1: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने 0 से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के 4थे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7, FM पहलगाम 100.1, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से, और अक्सर लोग पूछते हैं कि इतनी ऊंचाई और कठिन रास्ते पर सरकार यात्रा को कैसे बेहतर बनाती है। अगर हम देखें तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल कमाल कर दिया है। पहले जो रास्ते बेहद पतले और ख़तरनाक होते थे, उन्हें अब चौड़ा कर दिया गया है और पूरे ट्रैक पर स्ट्रॉन्ग हैंड रेलिंग्स लगाई गई ताकि हर कोई हिफाजत से चल सके। इसके अलावा आप जानते हैं, पूरे रास्ते पर मॉडर्न लाइटिंग, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन बूथ्स, हाईटेक मेडिकल कैंप्स और हर एक यात्री के लिए RFID ट्रैकिंग की सुविधा दी गई। यानी हर एक श्रद्धालु पर सैटेलाइट से नज़र रखी जाती थी ताकि वो कहीं भटके नहीं। तो है ना ये कमाल की बात। श्रोताओं, कहानी यही ख़त्म नहीं होती। आने वाले सालों में ये यात्रा और भी ज़्यादा आसान और आधुनिक होने वाली है। सरकार अब एक मल्टी करोड़ अमरनाथ मार्ग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिससे बालतल और पहलगाम के रास्तों को ट्रैकिंग के अलावा व्हीकल फ्रेंडली और बेहतर बनाया जाएगा। यही नहीं, फ्यूचर में मॉडर्न रोपवेज यानी कि गंडोला लगाने की भी प्लानिंग चल रही है, जिससे बुजुर्ग और बीमार लोग भी जो है बिना किसी परेशानी के बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही ट्रैक्स पर इको फ्रेंडली टॉयलेट्स और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को और अपग्रेड किया जा रहा है,

ताकि हमारे कश्मीर की खूबसूरत वादियों की हरियाली और पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा हमारी सदियों पुरानी कश्मीरियत और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल है। इस यात्रा की कामयाबी के पीछे अगर हम देखें तो यहाँ के लोकल कश्मीरी भाइयों का सबसे बड़ा हाथ होता है। गुफा की खोज करने वाले

करते हैं। इनके बगैर अगर हम देखें तो अमरनाथ यात्रा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो चलिए इस खूबसूरत भाईचारे को सलाम करते हैं और सुनते हैं कुछ प्यारे से भजन। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए FM बालतल FM पहलगाम के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीडीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, आपको बता दें कि कश्मीर सिर्फ एक यात्रा स्थल नहीं है, दुनिया की सबसे खूबसूरत जन्नत यही है। जी हाँ, कश्मीर के लिए यही कहा गया है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है और यही है। जी हाँ, अगर आप यात्रा के बगैर भी कभी कश्मीर घूमना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आपको कुछ जगहें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले श्रीनगर का डल लेक। डल लेक में आप शिकारा राइड कीजिए, हाउस बोट में रहिए और हसीन मुगल बागों का नज़ारा देखिए। आपको गुलमर्ग जो है वो देखना चाहिए। गुलमर्ग जो है देखने वाली जगह है, जिसे मीरोज ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, जहां पर एशिया का सबसे ऊंचा गंडोला राइड है। पहलगाम की अगर आप बात पहलगाम के बारे में तो आप जानते ही हैं, वहां पे कुछ और वादियां हैं जो आपको देखनी चाहिए। चाहे बेताब वैली की बात करूँ, आरू वैली की बात करूँ, ये कुछ ऐसी वादियाँ हैं वहाँ पर जिनकी खूबसूरती देखकर आप हैरान हो जाएंगे। सोनमर्ग की अगर बात करूं तो वहाँ गोल्डन मीडोज और थाजवास ग्लेशियर के नज़ारे जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अगर आप कश्मीर बहार के मौसम में आना चाहते हैं, आप मार्च से मई के मौसम में आ सकते हैं, मार्च से मई तक के मौसम में, जहाँ पर ट्यूलिप गार्डन भी खुलता है। और अगर आप ऑटम जो है यहाँ एंजॉय करना चाहते हैं, आप सितंबर से नवंबर तक जो है कश्मीर विज़िट कर सकते हैं। अगर आप सितंबर से नवंबर में आते हैं, आप चिनार के पत्ते देखेंगे कि चिनार के पत्ते जो हैं वो सुनहरे हो जाते हैं। और अगर आप बर्फ़ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप विंटर सीज़न में आ सकते हैं, जो कि दिसंबर से शुरू होता है फरवरी तक। और अगर आप समर के मौसम में आना चाहते हैं तो आप जो हैं जून से विज़िट कर सकते हैं बिल्कुल अगस्त तक। और आप देखें कि कश्मीर में हर मौसम की अपनी एक वैल्यू है, और कोई भी मौसम आप अगर इन्जॉय करना चाहते हैं, चाहे स्प्रिंग हो, ऑटम हो, समर हो या विंटर हो, आप कश्मीर

कश्मीर विजिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि स्प्रिंग, अगर आप यहाँ बाहर का मौसम विजिट करना चाहते हैं, बाहर के मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं, आप मार्च से मई के दौरान आ सकते हैं। अगर आप समर के मौसम में आना चाहते हैं, आप जून से अगस्त जो है उस दौरान ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप जो है ऑटम को एंजॉय करना चाहते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर उस वक्त एक अलग ही नज़ारा होता है। चिनार के जो पत्ते हैं वो सुनहरे हो जाते हैं। तो सेप्टेम्बर से नवंबर बेहतरीन टाइम है विजिट करने का। और अगर आप बर्फ़ को एंजॉय करना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी तक आप जो है कभी भी कश्मीर आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप यात्रा के लिए आए हैं या यात्रा के लिए आए हैं और आपको मौका नहीं मिला, वक्त नहीं मिला कश्मीर घूमने का, तो आप अलग से जो है कश्मीर ट्रिप के लिए प्लान कर सकते हैं, कश्मीर आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी रिलेटिव्स के साथ, और आप कश्मीर जो है विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं।

कश्मीर को धरती का स्वर्ग कैसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ की हर एक चीज़ में एक अलग ही जादू और सुकून है। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का अकेला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस यानी पानी पर तैरता हुआ डाकघर हमारे कश्मीर के डल लेक में है। यह खूबसूरत हाउस बोट के अंदर बना है। यहाँ से अगर आप किसी को चिट्ठी या पोस्ट कार्ड भेजते हैं तो उस पर जो स्टैम्प लगता है उसमें एक शिकारा और डल लेक की फोटो होती है। ये पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन खुलता है। ये पूरे पूरे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जहाँ 15 लाख से ज़्यादा रंग बिरंगे ट्यूलिप्स एक साथ खिलते हैं। इसको देखकर ऐसे लगता है जैसे आप बॉलीवुड की किसी पुरानी फिल्म में आ गए हैं। कश्मीर का पाम्पोर इलाका दुनिया में सबसे

बेहतरीन क्वालिटी के केसर के लिए जाना जाता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में जब यहाँ केसर के बाग खिलते हैं तो पूरी ज़मीन बैंगनी रंग के फूलों से ढक जाती है। इन फूलों की खुशबू पूरी हवा में घुल जाती है, जैसे जैसे देखना और महसूस करना एक अलौकिक अनुभव होता है। कश्मीर की ठंड से बचने के लिए यहाँ के लोग एक अनोखी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसे कांगड़ी कहते हैं। ये एक मिट्टी के बर्तन से बना होता है जिसमें गर्म कोयले होते हैं और इसे एक लकड़ी की टोकरी में रखकर कपड़ों के अंदर छुपा लिया जाता है। और इसके साथ जब कश्मीरी कहवा पीते हैं तो लगता है जन्नत यही है। तो श्रोताओं, अगर आपने अभी तक कश्मीर नहीं देखा, यात्रा के बगैर अगर आप कश्मीर नहीं घूमे, तो सोचिए आपने दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो मिस कर दी है। तो कश्मीर सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये एक जज्बात है। सोचिए आप एक खूबसूरत शिकारा में बैठे हैं, चारों तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़ है, क्या ऐसी सुकून वाली ज़िंदगी आपको कहीं और मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि कश्मीर सिर्फ ठंड में घूमने की जगह है तो आप सही नहीं सोच रहे हैं। अप्रैल में आइए ऐसे ट्यूलिप गार्डन जो खुलता है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, अक्टूबर में आइए केसर के बागों की खुशबू महसूस करने, और सर्दियों में आइए तो यहाँ की बर्फ़ पूरे कश्मीर को जो है सफ़ेद वादी बना चुका होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ के लोग जो है वो इतने मेहमान नवाज हैं कि अगर आप रास्ता भी भटक जाएं तो वो आपको अपने घर ले जाकर गरम गरम कहवा पिलाएंगे। तो आप अगर आप जो हैं कश्मीर प्लान करना चाहते हैं तो आपको मैंने बता दिया है कि आप किस किस मौसम में क्या क्या जो है यहाँ देख सकते हैं। और सच में जब आप कश्मीर को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सच में कहा गया है कि अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है और यही है।

जंग कर शिर जटा जूट धर कर डमरू बाजे।

आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, जहां एक तरफ अमरनाथ यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है, वहीं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर जिला पुंछ में प्राचीन और ऐतिहासिक श्री बाबा बुद्धा अमरनाथ यात्रा 2026 भी जारी है। जी हां, आपको बता दें कि 16 अगस्त से शुरू हुई ये 12 दिनों की यात्रा अब अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मोड पर पहुंच गई है। कल रात तक श्रद्धालुओं का आखिरी जत्था पूरे सुरक्षा घेरे के साथ पुंछ के मंडी इलाके में पहुंच चुका है। देश भर से आए हजारों भक्तों ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं और पूरी मंडी वादी इस वक्त शिवमय हो चुकी है। आज यानी 26 अगस्त को बुद्धा अमरनाथ यात्रा में सबसे बड़ा दिव्य पल आया है। छड़ी मुबारक की रस्म पूरी धूमधाम से शुरू हो चुकी है। आज ही के दिन ये पवित्र छड़ी मुबारक आचार्य स्वामी सरस्वती जी महाराज के नेतृत्व में पुंछ कस्बे के दशनामी अखाड़ा मंदिर से पूरे विधि विधान और पूजा हवन के बाद रवाना हुई है। छड़ी मुबारक अब पुंछ से 30 किलोमीटर दूर राजपुरा मंडी स्थित बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स में पहुंच चुकी है। अब ये पवित्र छड़ी अगले 2 दिन तक मंदिर में ही रहेगी। कल और परसों यहां महापूजा और विशेष आरती होगी और रक्षाबंधन यानी कि 28 अगस्त के अगले दिन इसे वापस लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और जम्मू कश्मीर में अमन और शांति की दुआ मांगी है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्धा अमरनाथ जो है समंदर तल से 4600 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ कोई बर्फ का शिवलिंग नहीं बल्कि सफेद पत्थर का एक नेचुरल शिवलिंग मौजूद है। मान्यताओं के मुताबिक ये वही जगह है जहाँ लंका के राजा रावणा के दादा ऋषि पुलस्त्य ने हजारों साल तक तपस्या की थी। उन्हीं के नाम

0: पर यहाँ बहती नदी का नाम पुलस्थ नदी पड़ा, जिसमें स्नान करने के बाद ही भक्त जो है वो मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात आपको पता है क्या है? ये मंदिर एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में है, और जब पहला जट्ठा या छड़ी मुबारक यहाँ पहुँचती है तो लोकल हिंदू, मुस्लिम और सिख कम्युनिटीज़ मिलकर उनका फूलों से स्वागत करती हैं। रास्ते भर में सभी कम्युनिटीज़ के लोग यात्रियों के लिए भंडारे लगाते हैं। ये है हमारे असली कश्मीरियत। तो श्रोताओं, अगर आपने इस साल इस यात्रा को मिस कर दिया है तो अगले साल का प्लान जो है आप अभी से बना लीजिए। सिक्योरिटी के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और CAPF ने कमाल के इंतजाम किए हैं। चलिए इस दिव्य और पावन जानकारी के साथ सुनते हैं बाबा भोलेनाथ का एक बेहद प्यारा भजन। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे संग FM बालतल, FM पहलगाम के संग।
1: तेरे माने एक तरफ, तेरे निराश एक तरफ, तेरे माने एक तरफ, तेरे निराश एक तरफ, सारी दुनिया देखी है पर कैलाश एक तरफ।

आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। एफएम बालतल 103.7, एफएम पहलगाम 100.1, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, इस साल की अमरनाथ यात्रा 2026 बहुत कामयाब और सेफ रही। इसके पीछे हमारे प्रशासन और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की दिन रात की मेहनत है। चलिए बात करते हैं इस साल के कुछ बड़े आंकड़े और कुछ कड़े नियमों की। 3 जुलाई 2026 को शुरू हुई इस यात्रा में इस साल 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। हालांकि खराब मौसम की वजह से आम यात्रियों के लिए ये यात्रा कुछ दिन पहले ही सस्पेंड की गई, पर दर्शन का ये आंकड़ा बेहद बड़ा और कामयाब रहा है। इस साल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। हर एक यात्री के लिए RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग कंपलसरी था, जिससे हर यात्री की लाइव लोकेशन ट्रैक की गई। पूरे ट्रैक पर ऑटोमेटिक ऑक्सीजन बूथ्स और एडवांस्ड मेडिकल कैंप्स लगाए गए थे, जहां SDRF और NDRF के जवान 24 घंटे तैनात थे। BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों को चौड़ा किया और मुख्य मोड़ों पर मजबूत रेलिंग्स लगाई। सेफ्टी के लिए प्रशासन ने कुछ कड़े नियम बनाए थे, जैसे कि बिना कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट और ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के किसी को भी बेस कैंप से आगे जाने की इजाजत नहीं थी। यात्रियों के लिए रास्ते में जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और तला भुना खाना पूरी तरह बैन था, ताकि उनकी जो सेहत है वो खराब ना हो। सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना जो है वही अलाउड था। शाम के एक तय समय के बाद किसी भी यात्री के लिए ट्रैक पर आगे बढ़ना मना था। सरकार और प्रशासन ने यात्रियों से सिर्फ एक ही उम्मीद रखी थी, इको फ्रेंडली यात्रा। यात्रियों से बार बार अपील की गई कि वो पहाड़ों पर प्लास्टिक और कचरा ना फेंके, प्रशासन के सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करें और इस वादी की शांति को बनाए रखें, और हमारे भक्तों ने इसका पूरा पालन किया। तो दोस्तों, सेफ और डिसिप्लिन्ड यात्रा के लिए हमारे प्रशासन और सुरक्षा बलों को एक बड़ा सल्यूट तो बनता है। चलिए इसी बात पर सुनते हैं एक और शानदार भजन। आप बने रहिए हमारे संग, FM बालतल, FM पहलगाम के संग।

अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, आपको बता दें कि पवित्र छड़ी मुबारक पंचतरणी पहुंच चुकी है। महंत दीपेंद्र गिरी जी और देश भर से आए साधुओं का पवित्र जत्था जो है अब पंचतरणी कैंप में मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो साधु है उनकी जो दिनचर्या है वो क्या होती है, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि सुबह 4 बजे से ही इनकी भक्ति शुरू हो जाती है, दिन भर मंत्रचरण, और अब शाम को यहाँ एक अलौकिक संध्या आरती होने वाली है जिसके जयकारों से पूरी पंचतरणी वादी जो है वो गूंज उठेगी। आज और कल यानी 2 दिन तक छड़ी मुबारक पंचतरणी में ही रुकने वाली है। इसके बाद आएगा सबसे बड़ा दिन परसों यानी 28 अगस्त रक्षाबंधन को। सुबह सूर्योदय से पहले छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रवेश करेगी, वहां आखिरी महापूजा होगी और इसी के साथ इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। तो यहां पर हम आप तक इस छड़ी मुबारक की यात्रा के हवाले से हर एक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे संग FM बालतल, FM पहलगाम के संग।

0: Superman.
1: एफएम बाल्टल 103.7 एफएम पहलगाम 100.1 डीटीएच और न्यूज ऑन एयर एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल पर आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि पवित्र छड़ी मुबारक पंचतरणी में विश्राम कर रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जगह को पंचतरणी क्यों कहते हैं और इसकी क्या वैल्यू है? पंचतरणी का मतलब है पांच पवित्र धरों का संगम। शास्त्रों के मुताबिक जब भोलेनाथ गुफा की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने जीवन के पांच

जी हाँ, जीवन के पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को यहीं पर त्याग दिया था। ये पांचों तत्व आज भी यहाँ पांच अलग-अलग नदियों के रूप में बहते हैं। श्रद्धालु गुफा में जाने से पहले इस पवित्र जल में स्नान करते हैं ताकि वो साक्षात शिव के दर्शन के लिए शुद्ध हो सके। तो सोचें, इस वक्त छड़ी मुबारक और साधु संत कितनी पवित्र धरती पर बैठे हैं। चलिए, इसी दिव्य ज्ञान के साथ सुनते हैं एक बेहद सुहाना भजन।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, परसों यानी 28 अगस्त रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। हम सब जानते हैं कि इस दिन बहनें अपने भाइयों की कल्याण के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमरनाथ यात्रा हमेशा रक्षाबंधन के दिन ही क्यों संपन्न होती है? इसके पीछे छुपी है एक बेहद अद्भुत और पवित्र वजह। चलिए आज आपको इसका रहस्य बताती हूँ। पुरानिक मान्यताओं के मुताबिक रक्षाबंधन यानी कि श्रावण पूर्णिमा ही वो सबसे बड़ा पावन दिन है जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। कथा सुनाने से पहले महादेव ने माता पार्वती को सृष्टि की रक्षा और अमरत्व का वरदान दिया था। इसलिए इस दिन को साक्षात शिव शक्ति के मिलन का दिन माना जाता है। जब परसों छड़ी मुबारक गुफा में प्रवेश करेगी तो वो इसी पावन कथा और रक्षा के वरदान का उत्सव होगा। श्रोताओं, श्रवण यानी सावन का महीना पूरा का पूरा भगवान शिव को समर्पित होता है और पूर्णिमा इस महीने का आखिरी और सबसे शुभ दिन होता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन चांद अपनी पूरी शक्ति में होता है और गुफा के अंदर बाबा बर्फानी का हेम शिवलिंग भी अपने पूरे और सबसे भव्य आकार में होता है। इसे बड़ा और शुभ दिन यात्रा के समापन के लिए हो ही नहीं सकता है। सदियों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक भगवान शिव की पवित्र लाठी यानी छड़ी मुबारक इसी दिन सुबह सुबह अमरनाथ गुफा में पहुंचनी है। वहां पूरे देश की खुशहाली, तरक्की और सबकी सुरक्षा के लिए

महापूजा होती है। इस मुख्य पूजा के बाद ही इस साल भर की मुश्किल यात्रा का औपचारिक समापन किया जाता है। तो यहाँ पर परसों के दिन हमारे लिए आप देख सकते हैं कि सिर्फ भाई बहन का प्यार का नहीं बल्कि बाबा बर्फानी और माता पार्वती के उस दिव्य आशीर्वाद का भी दिन है जो पूरे देश को सुरक्षा का कवच देता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा भजन जो है वो सुनते हैं।

श्रोताओं, अगर आप इस साल दर्शन पर नहीं आ पाए हैं तो बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि बाबा के दरबार में कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता जब तक साक्षात महादेव का बुलावा ना आए। शायद बाबा चाहते हैं कि आप अगले साल और भी ज्यादा तैयारी और पूरे परिवार के साथ आए। उनके घर में देर है, अंधेर नहीं। आप बस अपने दिल में सच्चा विश्वास रखिए, अगले साल आपको बुलावा जो है वो जरूर आएगा। और तब तक के लिए घर बैठे ही अपनी आंखें बंद कीजिए, बाबा का ध्यान धरिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। यहाँ पर वक्त हो चला है आरती का, आइए आरती सुनते हैं।

0: सत चेत आनंद स्वरूप, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, नाथों के नाथ अमरनाथ, बाबा बर्फानी के पावन धाम में, मंगल भवन में, आनंद भवन में, कल्याण भवन में, सुंदर प्राकृतिक अलौकिक दिव्य सुंदर शांत भवन में आप सभी भक्तजन श्रावण के सोमवार के उपलक्ष्य पर बाबा के धाम में उपस्थित होकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं, दिव्य धाम के दर्शन कर रहे हैं, माँ पार्वती के दर्शन कर रहे हैं, वही से पवित्र गुफा का दर्शन।
1: मैंने मुकुट मंगाया बोले बाबा के लिए,
0: वो तो
1: जहो वो तो

0: प्यार कर
1: बोलिए शंकर भगवान की जय।
2: तो दोनों प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ है और राजा हिमाचल के घर बात पहुंच गई है, शादी की तैयारियां हो रही है। बाग कैलाश में भोले बाबा के गण प्रसन्न हुए हैं, भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं, कैलाश में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी को न्योता भेजा गया, ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु जी को, सारे देवताओं को न्योता भेजा गया, निमंत्रण भेजा गया, बाबा की शादी है, शादी के लिए निमंत्रण दिया गया। तैयारी हो जाती है, वो दिन आ जाता है, बाबा की शादी का अवसर आ जाता है। सारे देवता जो है अपना अपना श्रृंगार करने में लगे हुए, ब्रह्मा आदि देवता शक्तियों के साथ, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ और अपने सवार इंद्र आदि देवता रावत हाथी का श्रृंगार कर रहे हैं कि भोले बाबा की शादी है, वो देवों के देव महादेव है, ऐसी शादी नहीं है, बाबा बर्फानी की शादी है, वहाँ श्रृंगार करके जाएंगे। बोलिए शंकर
0: भगवान की जय।
2: गरुड़ जी तैयार हो रहे हैं, सारे देवता श्रृंगार कर रहे हैं। कैलाश में भोले बाबा बैठे हैं, वो सारे गण चुपचाप बैठे हैं, कह रहे हैं प्रभु सारे देवता तो अपना अपना श्रृंगार में लगे हुए हैं, हमारा आपका श्रृंगार करने कौन आएगा। तो भोले बाबा चुप करके बैठे रहे कि हमें तो पता नहीं, शायद शाम रात तक कोई आ जाए, परंतु शाम का समय हो गया, रात का समय हो गया, भोले का श्रृंगार करने कोई नहीं आया है। बोलिए शंकर
0: भगवान की जय।
2: बाबा चुपचाप बैठे हैं, नंदीगण आते हैं, बाबा आपका श्रृंगार कौन करेगा। और भोले बाबा कहते हैं हमें किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं है, मेरे गण मेरे प्रिय जो मेरे साथ दिन रात रहते हैं वही मेरा श्रृंगार करेंगे। बोलिए शंकर
0: भगवान की जय।
2: जब ऐसा समय आता है तो सभी विचार करते हैं, एक गण कहते हैं, और गण भी ऐसे कोई भूत कोई प्रेत जिनकी अपनी शादियों का पता नहीं, वो बाबा का श्रृंगार करने में लगे हैं। कहते हैं बाबा हमने सुना है कि जो है दूल्हे के सिर पर एक मुकुट होता है, तो मुकुट की व्यवस्था की जाए। भोले बाबा कहने लगे मुकुट की व्यवस्था हो जाएगी, बाबा ने जटाओं को घुमाया और बड़ी जटाएं बना दी, मुकुट बना दिया। बोलिए शंकर भगवान।

बाबा का मुकुट तैयार हो गया और एक गन आया, कहता है बाबा कि हमने सुना है दूल्हे के दूल्हे को सेहरा बनवाया जाता है। बोले बाबा कहे कि वो कौन सी बड़ी बात है, जितने सर्प थे जितने नाग थे उनका वाहन करके उन्होंने अपना सेहरा बना लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक गन आया, कहे बाबा कि कह सुना है कि जो दूल्हा जो है बाजू बंद पहनता है तो

0: आता है। एक गण बोले कि ऐसी कोई मैं व्यवस्था करके लाता हूँ। वो गण जाते हैं और शमशान में जाते हैं, नहीं नहीं अभी चिता भस्म हुई है, वो भस्म उठा के भोले बाबा के ऊपर डाल देते हैं। बोलिए शंकर
1: भगवान की।
0: और बाबा इतने कोरे हो जाते हैं, बाबा कहते हैं इससे श्रृंगार से तो मैं और सुंदर हो गया। अब बात आ गई माला की, बाबा का श्रृंगार हो रहा है। कहने लगे कि भोले बाबा को कौन सी माला पहनाई जाए, कोई पैसों की माला डालता है, कोई फूलों की माला डालता है। एक गण वहां खड़े थे, कहने लगे हम कोई ऐसी वैसी माला नहीं डालेंगे, बाबा को ऐसी माला डाली जाएगी जो माला जीवन पर्यंत रहे। फिर शमशान में जाकर सारे जो शमशान में महाशमशान में जितनी मुंड थे सभी लाके भोले बाबा के गले में डाल दिए। बोलिए शंकर
1: भगवान की जय।
0: भोले बाबा ने मुंडों की माला डाली है, सारा श्रृंगार भोले बाबा का हो रहा है। और अब ये सोचने लगे कि भोले बाबा बराती में तो लोग भिन्न भिन्न वाहनों पे जाते हैं, हमारे पास तो वाहन नहीं, इतने में नंदी बाबा आ जाते हैं। बोलिए शंकर
1: भगवान की जय।
0: कहते बाबा आप मेरे पे चढ़कर जाओगे, बम बम बोले करते जाएंगे, इस प्रकार से ये बाबा की बरात जाएगी। तो इतने में क्या होता है कि भोले बाबा का श्रृंगार हो जाता है, भोले बाबा तैयार हो जाते हैं और देवता भी अपनी शक्तियों के साथ जो है महालक्ष्मी के साथ आ जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था होती है, जब शादी होती है तो जो शक्तियां होती हैं, जो स्त्री शक्ति होती है उसका भाव रहता है कि मैं हम दूल्हे को देखे वो कैसा लग रहा है। तो जब वो एक तरफ खड़ी रहती हैं तो गण पूछते हैं कि माताएं आप क्यों खड़ी हैं, कह रहे हम दूल्हे को देखने के लिए खड़े हैं। बोलिए शंकर
1: भगवान की जय।
0: माताओं ने सोचा भोले बाबा ने कोई दिव्य पता नहीं कितना सुंदर श्रृंगार किया होगा, कितने सुंदर लग रहे होंगे। गण कहता है वो देखिए दूल्हा नंदी पे बैठ के आ रहा है। भोले बाबा ने जैसे नागों का सहरा पीछे किया तो जो है शक्ति माता है, सारे देवते हैं, वो घबरा गए। बोलिए शंकर
1: भगवान की जय।
0: अरे ऐसे दूल्हे के साथ जाएंगे तो बात नहीं बनेगी, हमारी इतनी इज्जत है, हमारी बेइज्जती होगी, हम कैसे जाएंगे। तो सारे देवता आगे आगे चले गए, भोले बाबा की बरात के लिए कोई नहीं बचा। बोलिए शंकर
1: भगवान की।
0: गण कहने लगे प्रभु बरात तो आगे चली गई, हम बच गए, अब क्या करें। कह रहे चिंता की बात नहीं है, अपनी बरात जाएगी। भोले बाबा ने श्रृंगी ब्रिंगी को कहा लाओ जयकारा, नमः पार्वती पते हर हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर
1: हर महादेव।
0: बाबा ने जब श्रृंगी ब्रिंगी को कहा, सारे संसार के जितने भूत जितने प्रेत प्रेतनी डाकनी शाकनी सब बाबा की बरात में आ जाते हैं। बोलिए शंकर
1: भगवान की जय।
0: बाबा की बरात चलती है कैसे।

0: हे बम बम
1: भोले,
0: बम बम
1: भोले,
0: बम बम
1: भोले,
0: बम बम बम बम
1: भोले,
0: बम बम
1: भोले,
0: बम बम
1: भोले।
0: बोलिए शंकर भगवान
1: की जय।
0: बाबा की बरात जाती है, आगे आगे देव पहुंच गए हैं, भगवान विष्णु पहुंच जाते हैं आगे, राजा हिमाचल, रानी मैना, सारे लोग दूल्हे का दर्शन करने के लिए खड़े, और भगवान विष्णु को आते हुए देखते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि यही दूल्हा है, तो जब ऐसा भाव आता है बड़े प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान मन ही मन सोच रहे हैं अभी हमारा सत्कार कर लो, पर जब दूल्हे को देखोगे तो सारा मंगल हो जाएगा। बोलिए शंकर
1: भगवान की जय।
0: ऐसा ही आदर सत्कार किया जाता है, आदर सत्कार होता है जब बोध हो जाता है कि ये दूल्हा नहीं है, तो कहते हैं दूल्हा तो पीछे आ रहा है। एक अजीब सी ध्वनि भूत प्रेतों की आना शुरू हो जाती है, तो सभी सोचते हैं ये दूल्हा आ रहा है या कौन सी ये हवा आ रही है जो डरावनी है। तो बाबा जब देवता पीछे होते हैं तो भोले बाबा सामने आते हैं। रानी मैना जो है वो आरती के लिए जब आती है, जब देखती है पहली बार ही थाली घुमाती है और चक्कर खा के गिर जाती है। बोलिए शंकर भगवान
1: की जय।
0: और जो दूल्हे को देखने अन्य जन आए थे, बच्चे सारे बेहोश हो जाते हैं, अपने अपने घरों में भाग जाते हैं, और उनकी माताएं कहती हैं कि आप क्यों आगे दूल्हे को देखने गए थे। कह रहे कि इस बार जो अगर बरात का दूल्हा देख लिया, अगली बार जिंदा नहीं बचेंगे। बोलिए शंकर
1: भगवान,
0: ऐसा दूल्हा है भोले बाबा, ऐसा स्वरूप लेके आए हैं, कैसी मेरे प्रभु की लीला हो रही है। तो जब मैना जो है चक्कर खा के गिर जाती है, उठा के अंदर लिया जाता है, गोरा मैया को गोद में लेती है, कहती है तेरे

0: लेकर मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी, पर इस दूल्हे से तेरी शादी नहीं होने दूंगी। बोलिए शंकर
1: भगवान की जय।
0: एक तो वो दूल्हा ऐसा और बराती ऐसे, कहां ये महलों में रहने वाली ये पार्वती कहां सुख पाएगी। जब ऐसा होता है तो बोले बाबा की बरात पहुंचती है। बोलिए शंकर भगवान
1: की जय।
0: तो भजन के माध्यम से पार्वती देव हुए देख के शिवाने डेरा लाया, बम बम पार्वती देव हुए देख के शिवाने
1: डेरा लाया,
0: बम बम पार्वती देव हुए देख के शिवाने डेरा लाया।

0: कोई गोरा तेरा यार गया लारा वो दे कोई गोरा तेरा यार गया गोरा और राजे दा जो आई सानू लग दक
1: राजे दा जो आई सानू लग दा कंगाल वे
0: वो चिट्टी चिट्टी दाढ़ी ओदे लंबे लंबे बाल वे
1: चिट्टी चिट्टी दाढ़ी काले लंबे बाल ने
0: रे गोरा तेरे किस्मत गोटी नागर गल विच पाया लाल मुनि बजोला बन के दादा जुन
1: विच माया
0: गोरा दा ओ देखो
1: लाड़ा
0: चढ़े पैल ते आया
1: चढ़े पैल ते आया।

0: देखो इस बाबे ने सोहांग की रचाया है, देखो इस बाबे ने सोहांग की रचाया है,
1: देखो इस बाबे ने सोहांग की रचाया है,
0: देखो इस बाबे ने सोहांग की रचाया है।
1: पंगा दिया बोरियां भी नाल लेके आया है,
0: पंगा दिया बोरियां भी नाल लेके आया है।
1: ओए गोरा तेरे किस्मत गोटी नाग नगल बिच पाया, नारद मुनि बचोला पर क्या दादा जुलम जमाया।
0: गोरा दा
1: हो देखो
0: लाड़ा
1: हो चढ़े
0: पैल ते आया,
1: चढ़े
0: पैल ते आया।
1: बम बम बम बम गोरा दा
0: देखो लाड़ा
1: हो चढ़े
0: पैल ते आया,
1: चढ़े
0: पैल ते आया।
1: ओ पार्वती दे बुए दे अग्गे शिवा ने
0: डेरा लाया,
1: ओ पार्वती दे बुए दे अग्गे शिवा
0: ने डेरा लाया।
1: ओ गोरा दा देखो लाड़ा
0: चढ़े पैल ते आया,
1: पैल ते आया। ओके बराती

0: जब पार्वती मैया ऐसी स्तुति करती हैं, बोले बाबा अपने सुंदर स्वरूप में आ जाते हैं कर्पूर गौरम जैसे, बोलिए
1: शंकर भगवान की दय।
0: सभी सभी जिनका डर था वो भय उनका हर लेते हैं। निखिल भय हरम पंचवक्त्रम त्रिनेतम, सभी जो डरे हुए हैं वो सभी शांत हो जाते हैं। बाबा की पूजा की जाती है, आदर सत्कार किया जाता है और मंडप में बिठाया जाता है, बोलिए शंकर भगवान की जय। वो वाली बात तो आगे बढ़ी थी। दूसरी ओर जब पार्वती मैया के फेरे होने लगे भोले बाबा के साथ, माता ने कहा कि आपके सिर पर चंद्रमा, आपके गले में नाग, तो जब चंद्रमा भी है नाग भी है और जटाओं में गंगा, तो इसके साथ में कैसे फेरे लूंगी, पहले इसको उतारिए फिर सारे फेरे होंगे, बोलिए शंकर
1: भगवान की जय।
0: तो फिर भजन के माध्यम से बोलिए बाबा।

0: तुझा फेरा पार्वती ने आन पुआड़ा पाया तुझा फेरा पार्वती ने आन पुआड़ा पाया
1: चंद्रमा नू सिर

वैसी कृपा हुई है कि माता के प्रार्थना से आग्रह से भोले बाबा ने चंद्रमा को उतारा है, उसके बाद अब उष्णो को उतारा है, सर्प को उतारा है, चंद्रमा नाग को उतारा है, फिर फेरे लिए हैं, भोले बाबा की शादी हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। और शादी में जब बाबा का गोत्र पूछा जाता है तो भोले बाबा को गोत्र पूछा जाता है तो गोत्र में भोले बाबा अलख गोत्र बताते हैं। बोलिए शंकर भगवान। बाबा बैरागी हैं, माता पिता का पता नहीं है और अनादि है, मध्य है, अनंत है, वो भोले बाबा हैं। बड़े बाप से जो है प्रेम मिलता है, बाबा का विवाह होता है, सभी देवता पुष्प की वर्षा करते हैं। तो बोलिए शंकर।

0: शंकर भगवान की जय।
1: सभी देवताओं ने मंगल मनाया है, सभी भक्त प्रसन्न हुए हैं, सभी गण प्रसन्न हुए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। और जैसे देवों के देव महादेव की शादी हुई थी, वो ना कभी हुई है, ना अभी होगी, ना आगे होगी। बोले बाबा निराले हैं, इसलिए बोले बाबा को कहते हैं जोगी तेरा रूप निराला, अमरनाथ में डेरा डाला। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आइए इस पवित्र भाव से, इस आनंद भाव से आपको इस विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भक्त घरों से भी बाबा की इस विवाह को देख रहे हैं, उनका भी बोले बाबा पार्वती मैया मंगल करे, आप सभी का मंगल करे। तो आइए इस पवित्र भाव से आज की इस पवित्र आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए शंकर।

शंकराय च वयस्कराय च नमः भोले नाथ महाशिवाय। हरदांगे

0: लपा हरि ओम हर हर
1: हर हर महादेव
0: ओम जय शिव ओंकार मन भज शिव ओंकार मन रत शिव ओंकार शिव गल में रुंड माला शिव ओ रत मृगशाला शिव रहते मत महला शिव पार्वती का प्यारा शिव ओ पर जल दारा शिव हर मन वाला
1: शिव
0: जटाऊ वाला
1: शिव
0: चरण वाला
1: जटाऊ में गंगा विराजे मस्तक
0: चंद्रमा भी
1: औरत मृगशाला
0: हरि ओम
1: हर हर हर हर महादेव
0: हरि ओम
1: हर हर हर हर महादेव
0: हरि ओम
1: हर हर

0: श्री भक्त जन शीश झुकाएंगे, पिपर जन आपको आशीर्वाद देंगे। ओम आयुषम
1: वर्जस्य गोंग्रा चोदे,
0: बोलिए शंकर
1: भगवान की जय।
0: आज के आनंद की
1: जय हो,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय हो,
0: बाबा बर्फानी की
1: जय। आदेशो न्यूनम संपूर्ण दम याद
0: को बाबा के दरबार से शिव।
2: शाम की 6 बज रहे हैं। ये विशेष प्रसारण आप यात्रा 2026 के सिलसिले में आकाशवाणी के FM बालतल से सुन रहे थे। FM 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR की आराधना चैनल और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ थे हमारे सहायक इंजीनियर्स इंद्रपाल सिंह, मोहम्मद लतीफ और उनके साथ है शौकत अहमद। मैं आपकी उद्घोषिका फरजाना और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक। इसके साथ ही हमारी आज की सभा यहीं पे समाप्त होती है। प्रातः 7 बजे अमरनाथ यात्रा का विशेष प्रसारण लिए आपकी खिदमत में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम सीता लक्ष्मण व भक्तगण स्नान ध्यान पूजन भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजाकर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

सखिया जो गाए रघुकुल का निशानी, रखिया जो गाए

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक माला की दूसरी कड़ी। लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर।
2: रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। बड़े बड़े प्रतापी एकत्र हुए हैं जनक की यज्ञशाला में। जनक अपने सेवकों को आदेश दे रहे हैं, सबको उनके योग्य आसन दो। भारी भीड़, जनकपुरी के बाल जुबान जरठ नर नारी अपने समस्त गृह कार्य बिसार कर रंगभूमि में उमड़ पड़े। और तभी राजकुंवर तेही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर सरीरा। श्रोताओं, भगवान रामचंद्र के आसन ग्रहण करने पर क्या हुआ?

नारी बिलो कहीं हरसिहि निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप। और राम ही चितव भाई जिहि सिया सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। श्रोताओ, मैं बेचारा कवि कैसे उस अनिंद्य और सहस्र रूपी शोभा का वर्णन कर सकता हूं, आप स्वयं देखिए। मिथिलेश जनक की रंगस्थली में राजाओं की पंगत और नर नारियों के समूह के बीच राम लक्ष्मण, राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चोर।

0: जाला, मेले ही सी राम उरमाला।
1: बिना धनुष तोड़े ही? क्या बात कही तुमने। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अब गाहा, बिन तोरे को कुंवरी ब्याहा।
2: अरे एक बार कालव किन हो, सियहित समर जितब हम सो।
0: व्यर्थ मरहु जनी गाली बजाई, मन मोद कन्ही की भूख बुताई।
1: सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी।
3: भाटगण तनिक इधर आइए।
4: जी स्वामी।
3: अब आप इस सभा के समक्ष मेरा प्रण घोषित कीजिए।
4: महाराज, हम इसी अवसर की बाट जो रहे थे।
5: नगाड़ा बजाओ। हे पृथ्वी का पालन करने वाले उपस्थित राजागण, सुनिए। पर्ण विदेह कर कहे हैं हम, भुजा उठाए हैं विशाल।
6: सामने मंच पर स्थित ये शिव धनुष भारी है, कठोर है, ये सभी जानते हैं। आपको ये भी विदित होगा, रावण और बाणासुर जैसे महाबलियों को भी इसे छूने तक का साहस नहीं हुआ। समझ लीजिए कि आप लोगों का भुजबल तो मानो चंद्रमा है, और ये कठोर धनुष उसे ग्रसने वाला राहु है। हमारे स्वामी मिथिलेश जनक की घोषणा है, सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। तिरुभवन जय समेत वैदे ही, बिन ही विचार बरई हटते।
7: अरे देखो देखो कैसे तमतमाकर ये राजा लोग धनुष की ओर जा रहे हैं।
8: पर एक आज तो अपने आसन से उठा ही नहीं।
7: वे समझदार हैं, और वो देखो, वो जो तमक कर जोर अजमाने चला था ना, तनिक भी खिसका नहीं सका धनुष को।
9: अरे सभी तो जोर लगा रहे हैं।
7: बेकार,
4: जान पड़ता है और भी भारी हो गया ये धनुष। मनु पाए भट बाहुबल, अधिक अधिक करुआ।
7: ये सब राजा एक साथ जुट गए हैं, वो देखो। पर सब
4: दगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे।
7: सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी।
4: सभी राजा श्रीहत होकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब क्या होगा?
7: होगा क्या, लौटेंगे अपना समूह।
4: जी कुछ कह रहे हैं।
7: शान शान शान।
10: अतिथियों, मैं ये क्या देख रहा हूं, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जोपन उठाना। मेरी मनोहर कन्या, बड़ी भारी और अतिकमनीय कीर्ति, इन्हें पाने के लिए इस धनुष का दमन करने वाला वीर क्या विधाता ने रचा ही नहीं? इस धनुष को तोड़ना तो अलग रहा, कोई इसे दिल भर भूमि भी न छुड़ा सका। अब जनिको माखे भटमानी, वीर बीन मही मैं जानी। जो जनते बिन भट भूमि भाई, तो पनु करी होते न हसाई।
7: अब क्या होगा?
4: देखो छोटा भाई कुछ कह रहा है।
7: उसका मुख तो देखो, माखे लखन कुटिल भाई भौहे, रदपट भरकत नयन रिसों है।
11: हे दात, रघुवंश सिंह महु जहाँ कोई होई, ते ही समाज अस कही ना कोई। राजा जनक ने आपके यहाँ होते हुए भी बड़ी अद्भुत वाणी कही। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहू स्वभाव न कछु अभिमान। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक ब्रह्मांड उठावो। काचे खट जिमी डारो फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमी तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बाप रोपे नाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करूं बिलोकी अवसो। कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। हे नाथ, यदि आपके प्रताप के बल से इसे कुकुर मुत्ते की तरह ना तोड़ फेंकूं, तो आपके चरणों की शपथ है मुझे, मैं फिर कभी धनुष तरकश को हाथ में भी ना लूंगा।

0: सुना?
1: पर वो देखो, बड़ा भाई क्या कह रहा है, वो भी कुछ कहेगा क्या?
0: ना, सय नहीं रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा दे।
1: विश्वामित्र मुनि उठ रहे हैं।
0: जा रहे हैं क्या?
1: बड़े राजकुमार से कुछ कह रहे हैं।
2: दशरथ पुत्र पुरुष सिंह, तुम्हें इस संकट का निवारण कर सकते हो वत्स। उठहु राम भंजहु भवचापा, नेटहु तात जनक परितापा।
3: ऐसा की देखो तो खड़े हो गए राम, पर देखो देखो मुखड़े से लगता है हर्षु विषादु न कछु उर आवा। मुझे तो इनका सहज स्वभाव से उठना अच्छा लगता है। थवनी जुबा मृगराजु ल जाए। सखी देखो तो उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरखे लोचन फ्रिंग। देवताओं पितरों से मेरी तो प्रार्थना है सखी, यदि हमारे पुण्य कर्मों का कुछ भी प्रभाव है तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं रामू गणेश गोसाई। सखी सखी महारानी कह रही है सब लोग कौतुक निहार रहे हैं, कोई जाकर इन दोनों के गुरु विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं। राजा जनक भी अपनापन खो बैठे हैं। कहती हैं रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार सकल भूप करे तापा। सौधन राज कुंवर कर दे ही, बाल मराल की मंदर ले ही।
4: ऐसे तेजवंत को छोटा नहीं गिनना चाहिए। देखो ना, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखे उस सुजसु सकल संसारा। रबी मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को बस में कर लेता है, जरा सा अंकुश महामत गजराज को दबा लेता है।
5: हो प्रसन्न महेश भवानी, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे फलवती कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गण नायक बरदायक देवा, आज लगे कि न्यो दो सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करो चाप गुरता अति थोरी। पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठाना है, वो लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री भी डरे हुए हैं, वो भी तो पिताजी से कुछ नहीं कहते। विद्वानों की सभा में ये बहुत ही अनुचित बात हो रही है। कह धनु कुल सहु चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। हे विदाता, मैं किस तरह धीरज धरूं? भला कहीं सिरस के फूल के कण से हीरा छेदा जाता है। लगता है सारी सभा की बुद्धि ही बावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी। होई हरु रघुपति निहार।
3: सखी सखी तुम जरा सीता को संभालो, न जाने क्या बीत रही है इसके जी पर। राजकुमारी परिताप मत करो।
5: राजकुमारी चिंता के मारे तुम्हारी आंखें इधर उधर डोल रही हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जन विधु मंडल डोल।
3: बोलते क्यों नहीं राजकुमारी? गिरा अलनी मुख पंकज रोके, लोचन जलु रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना।
5: यदि तन मन वचन मोर बनु साचा, और रघुपति पद सरोज जितु राजा है, तो भगवान सकल उर्वासी, करे ही मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिले न कछु संते हो।
3: आंखें खुलो राजकुमारी, वो तुम्हारी ओर देख रही हैं।
6: सीता की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। लगता है उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यही समय है, अब मुझे और विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रिषित बारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। गुरुवर के चरणों में मेरा सादर प्रणाम।
3: देखो उधर देखो सखी, लखन लिखे रघुवंश मनी, ताक्यू हर को दंड।

0: के गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मंड।
1: हे दिशाओं के हाथियों, हे धरती को धारण करने वाले कच्छप शेषनाग वारा, राम चहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयसु मोरा।
2: ये क्या हुआ?
3: कैसे दामिनी दमकी?
2: आकाश में ये गोल गोल सा आकार कहां से आया?
3: वही तो धनुष है।
2: उठा भी लिया?
3: उठाने की बात करते हो, लेट चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब उठाड़े।

0: सखियो, राजकुमारी को राम के पास ले चलो। जयमाला पकड़ाओ, आगे बढ़ो बेटी।
1: राजकुमारी, सामने रघुवीर राम खड़े हैं, अब संकोच न करो। पहिरा बहु जयमाल सुहाई, बेचारी प्रेम विवश पहराई न जाई। जब उन्हें इतना भी स्पर्श नहीं कर पाती कि पैर किसे छुओगी राजकुमारी, समझी नहीं सकी। गौतम तियगति सुरति करी, नहीं पर सती पग पाने। राजकुमारी के इस भय की बात सुनकर रघुवंशमणि मुस्कुरा उठे। राजकुमारी, वो मुस्कुरा रहे हैं, यही अवसर है। राजकुमार के चांद मुख से हमारी राजकुमारी के कर कमल भयभीत हैं। गाओ गाओ सखी, जयमाला पड़ रही है।

0: कोई बात है?
1: खड़
0: बहनों का बात।
2: क्यों भाई क्यों?
1: छीन लो सीता को, दोरे धनुष ताड़ नहीं सरे।
2: दोनों राजकुमारों को बांध कर ले चलो, जीवत हमारी तुम्हारी को बरई।
1: और महाराज जनक उनकी सहायता करें
2: तो भी जीतऊं समर सहित दो भाई।
0: कैसी निर्लज्ज बातें कर रहे हैं आप लोग? उस समय आपकी शूरता कहाँ गई थी जब धनुष तोड़ना था?
3: शान शान।
4: अरे आप लोग बैठे।
3: अरे इधर देखो, इधर उधर देखो, प्रवेश द्वार की तरफ
4: है। ये कौन आ रहा है? बिशप कंठ पुरबाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगशाला,
5: कटिमुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे।
4: रघुपति परशुराम, परशुराम।
6: भृगुकुल भास्कर मुनि के शरीर में वीर रस के साकार स्वरूप परशुराम जी सभा में पधार रहे हैं। आप सब क्षत्रिय राजागण अपने अपने पिता का नाम लेकर

0: मुनिवर को दंडवत प्रणाम करें।
1: दंडवत प्रणाम
2: प्रणाम
3: प्रणाम
1: दंडवत प्रणाम
3: दंडवत प्रणाम
1: दंडवत प्रणाम
2: दंडवत प्रणाम
3: दंडवत प्रणाम
1: दंडवत प्रणाम।
0: विदेहराज आपकी इस रंगस्थली में कहो काह अति भीड़।
4: मुनिवर बात ऐसी है कि मेरी बेटी सीता जिसे अभी आपने अपना शुभाशीर्वाद दिया है उसका स्वयंवर था, इसलिए सभी राजागण मेरे अतिथि होकर आए हैं और इसीलिए सभा में ये सजावट शोभा भी आप देख रहे हैं।
0: ये तो हुआ, पर ये धनुष क्यों टूटा पड़ा है?
4: जी मैंने ये प्रण किया था कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता का स्वामी होगा। तो
0: मेरे आराध्य देव का धनुष कहूं चढ़ चनक धनुष कै तोरा, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उलटू मही जहां लही तब राजू।
5: नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा?
0: मेरा दास सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करी लड़ाई। सुनहु राम जय शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। सौ बिल गाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा।
2: मुनिवर बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु नासी फिरस कीनी गोसाई। एही धनु पर ममता के हेतु
0: रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न समार। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार।
2: सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे। देखा राम नयन के भोरे, छुवत टूट रघुपति हु ना दोसु। मुनि बिन काज करिए कतो
0: रे शठ, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना क्या? बालक बोली बदहु नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूपि बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। रे महीप कुमार देखिए फरसा, सहस बाहु भुज छेदन हारा। कहे देता हूं मात पितही जनी सोच बस, करसी महीप किशोर। गर्भन के अर भक दलन, परसु मोर अति भोर।
2: मुनिवर तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव को ठारू, चहत उड़ावन फूके पहारू। सुनिए महाराज, यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरे जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपको भृगुवंशी समझकर आपके जनऊ को देखकर आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं अपना क्रोध रोक कर कहता रहा। हमारे कुल की रीति सुर महिसुर हरिजन और गाय, इन पर हम लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते। इन्हें मारने से पाप और इनसे हार जाने पर अब कीर्ति मिलती है, इसीलिए आप मारेंगे भी तो भी आप ही के पैर पड़ेंगे। के तो मुनिवर कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। और जो बिलो की अनुचित कहू क्षमहु महामुनि धीर।
0: कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधा संकु। काल कबुल हुई है छन माही, कहूं पुकार खोरी मोहिनाई। तुम हटकौ जो चहूं उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा।
2: हे मुनि आपके सुयश का वर्णन आपके रहते कौन कर सकता है? अपने मुंह तुम आपन ही करें, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं था तो सु तब पुनि कुछ कहू, जनेरे से रो के दुसह दुख सहू। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। सूर समर करनी कर कहीं ना जना वही आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कतही प्रताप। लेकिन आप मुनिवर आप तो तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा।
0: सुनिए विश्वामित्र अब जन देह दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। बाल बिनो की बहुत मैं बाचा, अभी यहु मरन हार भा साचा।
6: क्षमा करे बंधुवर इससे अपराध हुआ, बाल दोष गुण गना ही न साधु।
0: खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देता जा रहा है फिर भी बिना मारे इसे छोड़ देता हूँ। सो क्यों केवल कौशिक सील तुम्हारे, नत यही काट

0: कुठार कठोरे गुरही उरिन हो त्यू श्रम थोरे।
1: हे भगुपति परशुराम परसु दिखा बहु मोहि मित्र बेचारी पचौ नृप द्रोह मिले न कबहु तुभट रन गाय विज देवता घर ही के बाड़े।
2: अनुचित है
3: अनुचित है
4: नाथ करहु बालक पर छोहु सूद दूध मुख करिय न कोहु जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करत आयाना जौ लड़िका कछु अजगर करही गुरु पितु मातु मोद मन भरही करिय कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी।
2: लेकिन फिर हंसा तेरा ये भाई राम तोर भ्राता बड़ पापी गौर शरीर श्याम मन माही काल कूट मुख पै मुख नाही सहज टेढ़ अनुहरई न तोही नीच मीच सम देख न मोही।
1: सुनिए मुनिवर क्रोध पाप कर मूल जे ही बस जन अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया परिहरि कोप करिए अब दाया टूट चाप नहीं जुरही रिसाने बैठी हो ही पाए पिराने जो अति प्रिय तो करिए उपाय जोरिए को बर गुनी बोलाए।
2: राम मैं तेरे ऊपर ये कम कृपा नहीं कर रहा हूँ बचा हूँ बिचारी बंधु लघु तोरा इसका तो मनु मलीन तनु सुंदर कैसे विष रस भरा कनक घटु जैसे।
4: सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचनु करिए नहीं काना बररे बालकु एक सुभाऊ इन्हीं न संत विदुष ही काऊ तेही नाही कछु काज बिगारा अपराधी में नाथ तुम्हारा कृपा कोप बधु बंधव गुसाई मौ पर करिय दास की नाई कही ये बेग जही विधि सिचाई मुनि नायक सोई करो उपाय।
2: राम मेरा रोज कैसी जा सकता है जब अजहू अनुज तब चितब अनय से मेरा रोज क्या प्रथा हो जाए नहीं एही के कंठ कुठारु न दीना तो मैं काह कोप कर कीना ये भी कोई बात है गर्व स्रवही अब निप रवनी सुनी कुठार गति घोर परसु अछति देखाऊं जियत बैरी भूप किशोर।
4: हे मुनिवर क्रोध त्याग दें आपके कुठारू के आगे मेरा सिर है जहिर से जाई करिय सोई स्वामी मोहि जानिय आपन अनुगामी मुनिवर प्रभु ही सेवक ही समरुकस तजहु विप्रवर रोसु बेशु बिलोकी कछु नहीं दोसु। बात ऐसी है मुनिवर लक्ष्मण तो लड़का ही है देख कुठार बाण धनुधारी भय लड़के ही रिस बीरु बिचारी नामु जान पे तुम्ही न चीन्हा बंस सुभाए उतरो ही दीन्हा यदि आप अन्य मुनियों की भांति होते तो हे गोसाई यही शिशु आपकी पदरज अपने सिर पर रखता क्षमहु चूक अनचानत केरी चहिए विप्र उर कृपा घनेरी हे नाथ हम आपके बराबर होने की कैसे धृष्टता कर सकते हैं कहां तो धरती पर चलने वाले चरण और कहां उन्नत मस्तक और फिर राम मात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बड़ नाम तुहारा। देखिए हमारा तो एक ही गुण है धनुष और आपके नौ गुण हैं श्रम दम तप इत्यादि सभी परम पुनीत विप्रवर सब प्रकार हम तुम सनहारे क्षमहु विप्र अपराध हमारे।
2: तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा जान पड़ता है मुझे निपट ब्रह्मचारी न जान सुन तुझे बताता हूं कि कैसा विप्र हूं मैं चाप स्रवा सर आहुति जानू कोप

0: अति घोर कृसानु समिधि सेन चतुरंग सुहाई महामहीप भय पशु आई मैं एहि परसु काट बल दीने समर जग जप कोटे ने कीने। तू ब्राह्मण मात्र के धोखे में मेरा निरादर कर रहा है, तुझे मेरा प्रभाव नहीं मालूम, ये धनुष क्यों तोड़ डाला? तेरा घमंड बढ़ गया और तुझे ऐसा अहंकार हो गया है मनहु जीत जब उठा रहा।
1: तनिक सोच विचार कर बोलिए मुनिवर, रिस अति टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं है तू करो अभिमाना। यदि हम सचमुच किसी को विप्र कहकर उसका निरादर करेंगे तो ये सत्य भी सुनिए कि संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे डरकर हम अपना मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलबाना, जौरन हम ही पचारे को लरही सुखेन कालु किन हो, क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना, कहो स्वभाव न कुल ही प्रसंसी, कालहु डरही न रन रघुबंसी।
0: क्या कहूं मैं, लगता है मेरी बुद्धि पटल उखड़ गए हैं, पर फिर भी राम रमापति करधन लेहू, खेचहू मिटे मोर संदेहू।
2: अरे अरे, ये कैसा चमत्कार, धनुष आप ही आप मुनि के हाथों से उड़कर राम के पास पहुंच गया।
3: अद्भुत आश्चर्य, राजकुमार है कि ये देवता।
4: देखो देखो, भृगुपति परशुराम हाथ जोड़ रहे हैं।
5: अरे ये तो राजकुमार राम के आगे विनती कर रहे हैं। सुनो सुनो।

0: रघुकुल केतु की जय, जय रघुकुल केतु की जय, जय जय रघुकुल केतु की जय, जय रघुपति, जय रघुपति।
1: हे श्रोताओं, भगवान श्री राम ने कौतुक भरी लीला करके सीता स्वरूप आदि शक्ति से मिलन का अभिनय किया। उसके बाद हम आप जिसे विवाह कहते हैं वो तो रीति निभाई, क्योंकि जैसा उसी समय विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा, टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। फिर भी राजा जनक ने अवधपुरी को दूत भेजे। दूतों ने अयोध्या जाकर महाराजा दशरथ से आदि से अंत तक का सारा वृत्तांत वर्णन कर दिया। फलतः सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। फिर तो अवधपुरी के सारे समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। पूरे ठाट बाट और सज धज के साथ अयोध्या से बारात जनकपुरी आई। श्रोताओं, विवाह संपूर्ण होने पर राजा दशरथ चारों वर वधुओं को लेकर बारात के साथ अवधपुरी लौटे। अयोध्या में भांति भांति से आनंदोत्सव मनाया जाने लगा।

युग पुरुष संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा है, हम एक से ही अनेक हुए हैं और फिर एक ही हो जाएंगे। और जब हम सभी उस एक परमात्मा को जान लेंगे, तब हम सब भी उस एक में ही मिल जाएंगे।

और इस संसार सागर से तारने वाले सिर्फ एक हैं, सद्गुरु साहिब। जो ये सत्य जान जाते हैं वे भव सागर से तर जाते हैं।

साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए।

मन मक्का दिल द्वारी का काया काशी जान दस द्वारे का तेहरा तामे ज्योति पिछान ईश्वर अंश जीवा विनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बिरला जानी कोई, साधक साधे साध न पावे।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ।

0: मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए

तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।